लेख लेख धर्म विचारे गावन तुदन ईसर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुदनो इंदर इंदर आसन बैठे देवतियां दर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध बीचारे गावन तुदनो जति सती संत।

गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मश पयाले। गावन तुदनो रतन उपाय तेरे आठ साठ तीरथ नाले। गावन तुदनो जोद महाबल सूरा गावन तुदनो खाणी चारे।

माया जिन उपाई कर कर देखै कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई ज्यों तिस भावै

कीमत नहीं पाई। जे सब मिलकै आखण पाहे, वड्डा ना होवै घाट ना जाए। ना उह मरै ना होवै सोग, देंदा रहै ना चुकै भोग। गुण एहो होर नाहीं कोए, ना को होआ ना को होए।

तिन कवण खलावै कवण चुगावै मन मह सिमरन करया। सब निधान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर

एक पढ़ है बहु सिमरत शाश्वत जी, कर किरिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड अवर ना कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू नेह चल करता सोई, तुद आपे पावै सोई वरतै जी, तू आपे करै सो होई।

तेजी जो सब सहका जानोई। आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैंडा साई, जो तौ पावै सोई थीसी, जो तू देह सोई हो पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनो कृपा करे तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़या आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछोड़े

आख वखाणे जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए तू कर कर वेखा है जान है सोए जन नानक गुरमुख परगट होए आसा महला पहला तित सरवरड़ै पई ले निवासा पानी पावको तिन है किया पंकज मोह।

है। आप हाथ दय मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुज जु कर हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाये प्यारे। दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पूरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा।

हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षण उपजायो, आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी, सेवकन को सैव गुण सुख दियो, सत्रन को पालमो बाद कियो, काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशानत, चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पशानै, काट काट के पट पट की जानै, जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा तरत तब देहे अपारा, जब अकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब तार, आप आपनी बूझ उचार, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम, निरंकार निर्विकार निरलंभ, आद अनि

नतन है पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत पेन पेन तो है तेती, तुमरा लखा न जाए।

रंक भयो राव कही पूपा, अंडज जेरज से तज कीनी, उत भुज खान बहुर राज दीनी। कहूं फूल राजा हुए बैठा, कहूं सिमट पयो संक्र इकैठा। सगरी सृष्टि दिखाए

सिख उबारु असिख संगरु दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करु रण खाता जे अस तुझ तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे।

हरे हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वय सकै ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहे उबारा। जिन नार नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दुख ते रहा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दै लेहो उबारी। सर्ब ठौर मोह हो सहाई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे,

हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, गुर सतगुर संग की रे हम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूके सब सोग संतापे। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। श्लोक महला तीजा। बाबी है हुक्म पछाणिया, गुर कै

पौड़ी एक वन खंड बैसह जाय साधना देवही एक पाला ककर पन शीतल जल हेवही एक भस्म चढ़ा

ਘਰ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੁਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਪਰੇ ਜੋ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਨਥਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਅਕੀਦੇ ਤੋਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਡੋਲਿਆ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਡੋਲ ਵੀ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਡੋਲਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਥਿੜਕਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਭੁੱਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਾ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਘ ਵਰਸ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਦਇਆ ਕਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੂੜੀ ਛੈਬਰ ਲਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੂਲਾਧਾਰ ਵਰਖਾ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛੈਬਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਛੈਬਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਵਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਘਣਾ ਮੀਂਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੂੜੀ ਛੈਬਰ। ਮੀਂਹ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਦਾ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਵਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੂਲਾਧਾਰ ਗੂੜਾ ਮੀਂਹ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਕਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਣਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ ਮੀਂਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਜਜ਼ਬ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਗੂੜੀ ਛੈਬਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਦੀ ਕੋਈ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਲਾਹਨੋ ਮੈਂ ਕਾਹੂ ਨਾ ਦੀਓ, ਮਨ ਮੀਠ ਤੁਹਾਰੋ ਕੀਓ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਉਲਾਮਾ ਕਿਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਮੀਠ ਤੁਹਾਰੋ ਕੀਓ। ਬਸ ਆਹ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੌੜਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਟਿਕਾਇਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਕੌੜਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਭੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾਂ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ। ਇਹ ਹੈ ਮਨ ਮੀਠ ਤੁਹਾਰੋ ਕੀਓ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਬਬੀ ਹੇ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਬਬੀਹਾ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਬਬੀਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਲਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਸ ਸੀ ਛੈਬਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਸਦੀ ਪਿਆਸ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕਣੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੋਲਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿੰਤੂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਪਾਏ ਹੋਏ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਬੀਹੇ ਕੂਕ ਪਕਾਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਲਈ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਿਆ, ਰਸ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਰਸ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਿਆ। ਸੰਸਾਰੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਰਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ, ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰਸ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ,
संसार दे विच भी पदार्थां विच आपां रहिंदे आ, संसार दे पदार्थां दा रस बंदे नूं दूजे पासे नहीं जान दिंदा। ते गुरु साहिब कहिंदे परमात्मा दे नाम दा रस उहदी लिवता इन्हां रसां तों किते उपर है, उहदे लई तां बचनी मन्ने भी मनुख गूंगा हो जांदा है। उहनां दी अवस्था तों, चेहरे तों, उहनां दे जीवन दे करतब तों, उहनां दे आचरण तों तां भावें अनुमान लग जाए, पर जे को कहे बोल के दसो। हालांकि जिज्ञासु भाव जदों कोई आंदा है, गुरु साहिबाना ने भगत साहिबाना ने बोलिया भी है, पर नाल कह दिता भी इहनू पूरा नहीं समझना। यह बोलिया जिन्ना कु असी शब्दा राही समझा सकते हैं, पर जो समझिया है उन्हों शब्दा विच बोल के दसिया नहीं जा सकता। वह तो जदों कोई देखता है, जदों कोई आप मानदा है, अनुभव करदा है, ओही जानदा है। इस करके दतार पिता महाराज सच्चे पातशाह जी ने बाणी विच वचन कीते ने कि हे भाई, उस परिपूर्ण परमात्मा बाबत कथिया नहीं जा सकता, वह कथ है दसिया नहीं जा सकता, उन्हूं ते आप ही देखना पैंदा है, वह बिना शब्दों तो है। इस करके दतार ने गूंगे मिठियाई खाई वाली गल भी कीती है कि जिसने उस परमात्मा दे नाम दे रस दी मिठाई खा ली, जिवें जिदे कोल जबान नहीं ते ओह बोल के नहीं दस सकदा, ओहदी मुस्कुराहट दसदी है, ओहदा चेहरा मोहरा दसदा भी इहनूं कुछ प्राप्त होया। इसे तरह दतार जी कहिंदे जिज्ञासु जिन्हें परमात्मा पा लिया, कूक पुकार रह गई, ओहदी पुकार मिट गई है, ओहदा अंदर तृप्त हो गया है। ते तृप्ती वाला फिर कदी पुकारदा नहीं, उता अंदर रस मानदा है। सुख वस्या मन आए, वो सुख जिदी लोड़ सी, जिदी पुकार करदा पिया सी, हुण मन विच आके वस गया है। हुण ते ओ कहिंदा है कहबे को सोभा नहीं, देखा ही परवान भी मैं उहनूं कह नहीं सकदा, किवें बयान करां, वो अकथ है, अगोचर है, देखा ही परवान, जिहड़ा कोई देखेगा उहनूं ही परवान होएगा। इस करके परमात्मा दे प्रभु दे अनुभव दे उत्ते बहुत चर्चावां हुंदियां भी इह है कि नहीं, क्योंकि जे है ते जिन्हां ने देखिया उह दर्शन तां उह दस नहीं सकदे, जिन्हां ने नहीं देखिया उह दसदे ने, उहनां ते विश्वास नहीं हुंदा। जिन्ने को बोलदे ने ना, जिन्ने को परमात्मा नूं प्रगट कर देंदे ने अपने शब्दा राही भी मैं साक्षात वेख लिया है, मैं प्राप्त कर लिया, इहदा भाव है वह अपनी मनोकल्पना दीआं तस्वीरां विच गवाचे होए ने। उहनां अपने मन का जिहड़ा रब बनाया, मन का रब तां कोई भी सिरज सकदा है, तुसीं अपने मन तो कुछ भी सिरज सकदे हो, रब बना लो, कोई देवता बना लो, कोई शक्ति बना लो, जो मर्जी सिरज लो, वह तुहाडा अपना है। पर दाता जी कहिंदे जिन्हें सचमुच पाया है उदी तो पुकार मिट गई है, भुख मिट गई है, सुख वस्या मनाए, उदे अंदर सुख वस गया। नानक सो साला ही है जे दिंदा सब ना जिया रिजक समाए। तीसरे गुरुदेव जी कहिंदे हे भाई, सानू ओ सलाना चाहिदा, उदी सिफत करनी चाहिदी है, जो जे दिंदा सब ना जिया रिजक समाए, जेड़ा सब नू दे रहा है, उदा दित्ता रिजक कदी मुकदा नहीं, उदियां दातां कदी मुकदियां नहीं, असानू उदियां दित्तियां हुईयां दातां दा शुकर करना चाहिए, शुकराना करना चाहिए। जिवें अज आपां शुकराना समागम विच जुड़े हां ना, भाई साहिब भाई किरणदीप सिंह ने, किरणदीप सिंह ने अपने बच्चे दे जन्मदिन की खुशी विच, परिवार की चढ़दी किरणपाल सिंह ने अपने परिवार की चढ़दी कला वास्ते शुकराना, यह शब्द बड़ा आम वरत्या जांदा है पर इहदे अर्थ बड़े वड्डे ने। शुकर आउणा, जिन्हूं शुकर आ गया है, शुकर दा अर्थ हुंदा है कर्तव्य हो जाना, शुकर दा अर्थ है भी हर वक्त धन्नवाद विच रहना, हर वक्त उस परमात्मा दे कर्तव्य विच रहना भी परमात्मा तेरा धन्नवाद। साडी तां इह संसार जिस विच असीं रहिंदे हां, असीं निक्की निक्की गल ते लोकां दा धन्नवाद करदे हां, निक्की निक्की गल ते असीं सॉरी फील करदे ने, इह बड़ा वड्डा वधिया शिष्टाचार है। पर गुरु साहिब सच्चे पातशाह जां परमेश्वर बाबत कदी ये विचार नहीं हुंदा भी उत्थे भी हर वक्त धन्नवाद करना, हर वक्त अपनी भुल दा एहसास करना, यह है शुक्र विच आउणा। शुकराने दा अर्थ है जदों बंदा शुक्र विच आ गया, हर वक्त प्रभु दा धन्नवाद करदा है, ते ओह किवें करीए, ओह जो कुछ सानू परमात्मा ने दित्ता है उहनू वेख के, अपना शरीर, अपना परिवार, अपने कर्म धंधे जो असी करदे आ संसार विच विचरदे आ, उह सब नू वेख करके शुकर विच रहण वाला बंदा शुकराना ही करदा है कि परमात्मा
तू सारियां दा दातार है, इको ही है, तेरे दित्ते विच कदी तोट नहीं आ सकती, देंदे तोट ना आवई, अगणत भरे भंडार, जिस दा दित्ता खाव ना, तिस कही है शाबाश। शाबाश दा अर्थ है शाबाश कहनी, शुक्र कहना चाहिए उहदा भी परमात्मा तेरा धन्नवाद है, तू सानू इस जोगा कीता, इस गोचरे कीता है कि असी आप जी दे शुक्र करन दे योग हो सके। यह बड़ी वड्डी वाहिगुरु की भगती है। भगती एक तरीके नाल ही नहीं हुंदी, भी जे को कहे भी मैं समाधि ला के बैठा ते कोई सिद्धि करा, कोई मंत्र करा, कोई शब्द करा, फिर ही रब प्रसन्न होएगा, नहीं। भगती दे अनेकां रूप ने, यह भी रूप है, एक बड़ा वड्डा रूप है गृहस्थी लई ते भगती लई है कि हर दात नूं वेख के वह शुक्र करे, धन्नवाद करे परमात्मा दा, जुड़िया रहे, ते दूजा जो उसने दिता है, जिन्ना दिता है, शुक्र ते सबर दे विच रहे। सबर वाला ही शुक्र कर सकता है। ये दोवें शब्द कट्ठे ने। सबर दा अर्थ है कि जो मिलिया है उदे विच रहना, संतोख ते सबर ते शुक्र ये आपस विच कट्ठे ने सारे, थोड़ा थोड़ा भिन्नता है। सबर संतोख दा अर्थ है जो कुछ मिल गया उदे विच रहना, सबर दा अर्थ है भी जो असी मंगदे पए आ जे अजे तक मिलिया नहीं ते सबर करके बैठे रहना विश्वास नाल कि एक दिन परमात्मा देगा। सबर विच ते संतोख विच रहन वाला ही शुक्र विच रहेगा, शुकराना करेगा। जे साडे कोल सबर ही नहीं भावकाल है, जे साडे कोल संतोख ही नहीं ते साडा शुकराना किसे काम दा नहीं। इस करके शुकराना करन तों पहलां, शुक्र विच आउन तो पहला सानू सबर विच आउना पाएगा, सानू संतोख विच आउना पाएगा, फिर साड़ा शुकराना भगती बन जाएगा, इबादत बन जाएगा, बंदगी बन जाएगा। गुरु कृपा करे जो शब्द भाई साहबान ने कीर्तन रूप विच पढ़िया सी, अक्सर जन्मदिन ते पढ़िया जांदा, वो पंचम पातशाह जी ने, गुरु साहब सच्चे पातशाह जी ने बड़ी कृपा की है कि हर सिख नू बच्चे और बच्ची नू यही असीस होनी चाहिए। जो असी गुरु साहबाना का जीवन पढ़ते हैं ना, धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का, आप असीसा सारी देने ते लेने, यही असीसा दित्तियां जांदी। वैसे अज तां यह भी रिवाज मुक गया है, क्योंकि बड़ी वड्डी हदेर गर्दी विच आपां चलने आ। जो साडा शिष्टाचार सी कि हर छोटे ने वड्डे दे पैरी हाथ लाना जा गोडी हाथ लाना, इथों तक बचन कहे जांदे सन। जे कोई बजुर्ग नूं कोई मिलदा सी, बजुर्ग मां बजुर्ग दादी नूं, ते ओह परिवारां दे विच इह शब्द बोलिया जांदा सी कि मां मत्था टेकना, बीबी मत्था टेकना, ओह जबान तों ही कहिंदी सी कि जिउंदा रहि लम्मियां उमर, वाहिगुरु चढ़दियां कला बख्शे। इह असीसां असीं लैंदे ते दिंदे आ ते चाहीदियां ने, किसे दे अंतर विच्चों, किसे दे अंतर आत्मा विच्चों साडे लई शुभ असीस निकलना एक बड़ा वड्डा साडा भाग बन जांदा है। असी किसे नूं असीस दईए इह भी भाग बनदा, लैण वाले दा भाग तां बनदा ही है, पर सच्ची भावना नाल असीस देण वाला भी अपना एक कर्म बना रहा। असी किसे नूं कुछ नहीं दे सकते ना, कोई कहे भी मेरे कोल तां देण नूं धन नहीं, मेरे कोल तां पदार्थ नहीं, मैं किवें सेवा करां, मेरे कोल तां कुछ है नहीं देण लई। गुरु साहब ने कहा तेनूं शब्द दित्ते ने परमात्मा ने, सोची दित्ती है, तू शब्दां नाल ही किसे दे नाल जुड़ सकदा है, यह भी तेरा पुन बन जाएगा, यह भी तेरी भगती बन जाएगी। जे तेरे शब्द ही ठीक ने, शब्द ही मिठे ने, प्यारे ने, ते तू समझ लै भी गुरु दे वाहिगुरु दा प्यारा बन जाएगा, क्योंकि वो आप मिठा बोलदा। गुरु दा बोल भी सतगुरां ने मिठा ही कहा ना, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हो संभल थकी जी वो कदे ना बोले कौरा, वो कदी कौड़ा कौरा बोल ना जाने, पूर्ण भगवान है, वो पूर्ण है, उन्हू कदी कोई कौड़ा बोल नहीं। कौड़े दा अर्थ है किसे नू खुशामदी करनी, झूठ बोलना, किसे दा मन दिखाउणा, सारे कौड़े दे विच आ जांदे ने। ते मिठे दा अर्थ है हर एक दे नाल निरभय भै भावना नाल, निर्वैता नाल, निरभौता नाल पेश आउणा, यह है मिठा बोलना, ते यह असीस बन जांदी है साडे ते तुहाडे दे लई। ते गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी जदों किसे नू असीस देंदे सन, धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे जीवन काल नू जदों आपां पढ़दे हां, तां सतगुरु जी ने जदों किसे नू असीस दित्ती ही क्या, तेनू करतार चेतावे, तेनू करतार ना विसरे, वाहिगुरु ना विसरे, बड़ी वड्डी असीस है। क्योंकि करतार चेते है ते सारा कुछ अपने आप आ जाएगा, क्योंकि माया जिहड़ी ओह भगवान दी ही दासी है ना, वाहिगुरु आ गया ते ओह अपने आप आ जाएगी। ते जे असी कहीए भी दाता ही आ जाण,
वाहिगुरु चेते ना आवे ते फिर दातां विख बन जांदियां ने, ओ दातां बुरियां बन जांदियां, दातां साडे लई सुख दा साधन घट ते मुश्किलां ज्यादियां खड़ियां कर देंदियां। इस करके गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी ने यही मां रूप होके असीस दिती है, पूता माता की आसीस की असीस है जी, निमख न बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश पर नाल। क्या भी किन्नू नहीं विसरेगा जेड़ा भौरे वर्गा बन जाए, हुण भौरे नू कदी फुल थोड़ा विसरदा, भवर तुम्हारा इहो मन होवै हर चरना हो कौला। कहिंदे इह जिहड़ा मन भौरे वर्गा बन जाएगा, भौरा कदी फुल नू नहीं विसार सकदा, उहनू जाना ही पैना फुल दे कोल। इसे तरह जदों मन गुरु दा प्यार वाला बन जाएगा, वह कदी गुरु नू विसार नहीं सकता, गुरु नू भुल नहीं सकता, वह गुरु के नेड़े ही रहेगा, गुरु ओहदे चुगिरदे ही रहेगा। सो गुरु कृपा करे, सतगुरु जी सानू सभना नू चढ़दी कला बख्शिश करके नवाजन, गुरु साहब कृपा करे परिवार ते बच्चे ते चढ़दियां कला बख्शिश करके नवाजन। जो अरदासां बेनतियां लै करके परिवार ने गुरु साहब जी दे संगत दे चरण परसे हन, सतगुरु जी अरदासां बेनतियां नू बूर लाउन, चढ़दियां कला बख्शिश करके नवाजन, भुलां चुकां दी खिमा। आओ हुण सतगुरु दतार पिता महाराज जी की पावन बाणी का कीर्तन भाई साहब भाई लाखन सिंह जी और उन्हों का जथा आप जी सरवण करवाएगा जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

आओ पत्ते दी सांझी पाओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। किरण पाल दे परिवार नूं बहुत बहुत बधाइयां। आओ एक शब्द की हाजरी है। अपनी सेवक को कभू ना बिसारो,

चाप भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र तुम ते हो सो आज्ञाकारी तुमरी गत मित तुम्ही नानक दास सदा कुर्बानी पूर्णा जी सतनाम श्री वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वाह श्री भगवती जी के पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरक गुरु नानक लई ध्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास सिंह हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नूं सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याई जिस तिथे सब्द हो जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौन त्यावे धाए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियों की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दीदार का ध्यान रखे बोलो जी पंजा प्यारियां चौहान साहबजादियां चाली मुक्तियां हटियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाए तेग वाही देख कैंडिट किया तिना प्यारिया सचियारियां की कमाई का ध्यान रखे खालसा जी साहब बोलो जी जिन्हां सिंघां सिघणियां ने धर्म हे सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़िया ते चढ़े आ रहे ने चराए गए गुरुद्वारा की सेवा लिए कुर्बानियां कीतिया धर्म निहारिया सिखी के सस्वस सिंह निभाई तिना की कमाई का ध्यान रखे खालसा जी साहब बोलो जी पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारा का ध्यान रखे बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावे चेतावन का सदका सर्व सुख होए जह जह खालसा जी साहिब तहत हर शरिया देखते फतेह बिरद की पैज पंथ की जी श्री साहब जी साए खालसा जी के बोल बाले बोलो जी सिखां नूं सिखी दान केस दान रहे दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशना चौंकियां झंडे बंगे जुग हो जुग अटल धर्म कह जयकार बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उच्चे मत पत कर आखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दाता जी श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरुधामां जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो फेर माण्यो के मान निताण्यो के तां न्योटियां दी ओर सच्चे पिता वाहिगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ आप जी के चरणा च अरदास बेनती महाराज जी आप जी की महान बख्शिश हुई पावन हजूरी अंदर रात्रि के दीवान सजाए गए सजे हुए दीवाना विच आप दी शब्द कीर्तन चल रही लड़ीवार गुर शब्द दियां विचारां उपरंत अमृत बाणी दे शब्द कीर्तन होए महाराज जीओ समुची सेवा निभाउंदिया बाणी पढ़दिया कीर्तन करद्या विचारां करद्या आप जी की सेवा संभाल करद्या होइयां बेअंत कुला बख्श देणियां जी अगे वास्ते समत बख्शिश करन लई शुद्ध गुरबाणी गायन करन दा बाल उदम बख्शिश करना जी बाणी दा पाव आईयां संगतां दे हिरदिया ते वसाउणा आईयां संगतां दी हाजरी दर प्रवान करनी सभना दियां तिल फुल पिटावां दर प्रवान करनियां सभना नूं दरों करो नाम दान गुरसिखी जीवन बख्शिश करना चढ़दी कला बख्शिश करनी कृपा करनी महाराज जी दुखां कलेशां रोगां दा नाश करना जी सुखां दा प्रकाश करना देशां विदेशां विच रख्या बख्शिश करनी महाराज जी बेअंत संगतां दूर दुराडे बैठे घरां विच लाइव गुरबाणी दे जाप सरवण कर रही हैं जाप सरवण करदे आप जी का धन्यवाद करदे बेअंत माया गुरु घर वास्ते गुरु घर के सेवादार संघा वास्ते ऑनलाइन भेटा की महाराज जी सारी संगति हाई दर प्रवान करनी सपना की माया सफली करनी किरत कमाइया विच बरकता पाउणियां श्रद्धा भावनावां संपूर्ण करनियां चढ़ती कला बख्शिश करनी महाराज जी आप जी के दर घर के सेवक भाई किरणपाल सिंह जी समूह परिवार वालों मिलकर बेटा जसनीत सिंह के जन्मदिन की खुशी में महाराज जी अज शामा के दीवाना की सेवा की गुरु के लंगर की सेवा की कृपा करनी महाराज जी सेवक परिवार की सेवा थाए पाउणी शुभ भावनावां संपूर्ण करनिया बेटा जसनीत सिंह के सिर ते मेहर प्रयात रखना लंबी आयु विद्या दे दान अमृत दियां दातां बख्श के निहाल करना तरो करो नाम दान गुरसिखी जीवन बख्शिश करना कृपा करनी महाराज जी जिसका कार्य इतनी ही किया मानस क्या विचारा दे मां वाक अनुसार सेवकां दे रहिंदे कार्य अंग संगो के सहायता करनी सफलता दी दात बख्शिश करनी महाराज जी चढ़दी कला बख्शिश करनी घर विच परिवार विच सुख शांति दी दात बख्शिश करनी जी
ਦਰਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਸੱਤ ਬੀਜ ਚਾਹਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ 31 ਰਾਗ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ $1,000 ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੀ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਦਰਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬੁਨਿਕਰ ਫਲਾਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ $101 ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ ਬੀਬੀ ਪਲਵੀ ਹਿਸੇਰੀਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਬੇਹਤ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਹਿਗਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਸੁਣਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਰਾਹ ਪੈੜੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ ਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤਾ ਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੁਹਰਾ ਅਕਿਆ ਪਹੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ

आकी रहना ख्वार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े से उतरे जो

सोनिहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

नित ध्याई हर पुरख निरंजना रहाओ जय हर सिमरन पया तह उताद जत की नी वड पागी हर जपना जन नानक को गुर ए मत दीनी जप हर पव जल तरना जह हर सिमरन पया तह उपात गत कीनी वट पागी हर जपना जन नानक को गुर ए मत दीनी जप हर पव जल तरना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। कीर्तन सुहला सुहला राग गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सत गुर प्रसाद। जय कर कीरता किए करते का होए विचारो तित कर गावो सुहला सिवरो सजनहारो। तुम गावो मेरे निरभाओ का सुहला हौ वारी जित सुहेले सदा सुख होए रहाओ। नित नित जेड़े समालन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवै ते सदाते कमण सुमार। संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देहो सजन असी सुनिया जो हो वै साहिब सो मेल। कर कर एहो पहुंचा सदरे नित पवन सदनहारा सिमरिया नानक से दे अवन रागा सा महला पहला। छे कर छे गुर छे उदेस गुर गुर एको वे सनेक। बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोय रहाओ। विस्वे कसियां कणियां पैरा किसी वारी माँ हो हुआ सूरजे को रुतनेक। नानक करते के केते वेस राग कनासी महला पहला। गगन मै थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती। धूपने आण लो पवन चवरो करे सगल बन राय फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत भेरी रहाओ। सहस तब नैन नन नैन है तोय को सहस मूर्त ननायक तो ही। सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तब गंधेव चलत मोही। सब मैं ज्योत ज्योत है सोए तिसदे चानन सब मैं चानन होए। गुरसाखी ज्योत प्रगट होए ज्योतिष भाव है सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो आंजनो मोए आए प्यासा। कृपा जल दे नानक सारन को होए जाते तेरे नाय वासा। राग गौड़ी पूर्वी मैला चौथा काम क्रोध नगर भो भरिया मिल साधु खंडल खंडा है। पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लेव मंडल मंडा है। कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर डंडौत पुन वड्डा है। राहो साकत हर साधना जान्या तिन अंतर हो मैं कंडा है। ज्यों ज्यों चले चुबै दुख पावे जमकाल सहसर डंडा है। अर्जन हर हर नाम सुमाणे दुख जन्म मरण भौ खंडा है। अबनासी पुरख पाया परमेश्वर भो सोभ खंड ब्रह्मंडा है। हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे हर राख राख वड्डा है। जन नानक नाम दा टेक है नामे ही सुख मंडा है। राग गौड़ी पूर्वी मैला पंजवा करो बिनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला। यहाँ खाट चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला। औद गटे दिन सरह नारे मन गुरमिल का सुवारे। राहो तो संसार विकार संसे मैं तरे ओ ब्रह्म ज्ञानी। जिसै जगाए पियावे और असकत कथा तिन जानी। जाको आए सोई बेहाजो हर गुरते मने वसेरा। निज कर महल पाओ सुख सहजे बौरना ए गो फेरा। अंतर जामी पुरख बिदाते सरदा मन की पूरे। नानक दास यह सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे।

हर सिमरन में आप निरंकार कर कृपा जिसे आप बुझाया। नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया श्लोक दीन दर्द दुख पंजे ना कट कट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु साथ अष्टपदी। जय मात पिता सुत मीत न पाई मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। जय महाप्यान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तेरे चलै। जय मुश्किल हो वैत पारी हर को नाम किन माहे उधारी। अनिक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कूट पापर हरै। गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख कनेरे। सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत हो सुखिया। लाख करोरी बंधन परै हर का नाम जपत निस्तरै। अनिक माया रंग तिख न बुझावै हर का नाम जपत आगावै। जे मार्ग जात केला तै हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नामन सदा त्याय नानक गुरमुख परम गत पाई है। छूटत नहीं कूट लख बाही नाम जपत तह पार पराही। अनिक बिगन जय आये श्रृंगार है हर का नाम तत्काल उदार है। अनिक जोन जन्मै मर जाम नाम जपत पावे विश्राम। हो मैला मल कबू न तू वै हर का नाम कूट पाप खूवै। ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाइये साध कै संग। जिह मार के गन जाहे न कूसा हर का नाम मुहां संग तूसा। जिह पैडे मांद गुबारा हर का नाम संग उजियारा। जहां पंथ तेरा को न सुजानू हर का नाम तह नाल पछानू। जय महाप्यान तपत बहु काम तै हर के नाम की तुम ऊपर छामू। जात्रिका मन तुझ आकर खै तै नानक हर हर अमृत भर खै। भक्त जना की बर्तन नाम संत जना कै मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उदरे जनकूट। हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साध कमात। हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन कीनु दान। मन तन रंग रते रंगे कै नानक जन कै बिरत विवेकै। हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर कै नाम जन को तृप्त भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब परै न भांग। हर का नाम जन की वटियाई हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन कौ भोग जोग हर नाम जपत कछ नाहि वियोग। जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा। हर हर जन कै मालक जीना हर तन जन को आ प्रभ दीना। हर हर जन कै ऊट सुतानी हर प्रताप जन अबर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते सुन्न समाद नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संकेते तरे। पार जात हर को नाम काम तीन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत रिद्वसै संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग वड भागी पाईऐ संत की सेवा नाम ते आईऐ। नाम तुल कछ अवर न होए नानक गुरमुख नाम पावै जन को। श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्व ठंडोल। पूज सनाही हर हरे नानक नाम अमूल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमरत विख्यान। योग अभ्यास कर

सगल त्याग बन मध्य फिरया, अनेक प्रकार किए बहुजतना, पुन दान हो में बहुरतना, शरीर कटाए हों मैं कर राती, वर्त नेम करे बहुपाती, नहीं तोल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे, महा उदास तपी सरथीवे, अग्न वाहे होमत प्राण, कनिकसव हैवर भूम दान, न्यौली कर्म कर बहुआसन, जैन मार्ग संजम मत साधन, निमक निमक कर शरीर कटावे, तौ पी हो मैं मैल न जावे, हर के नाम समसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत कत पाहे, मन कामना तीर्थ दे छुट्टे, गर्भ गुमान न मन ते हुट्टे, सोच करे दिन सर रात, मन की मैल न तन ते जात, इस देही कौ बहु साधना करे, मन ते कबहु न बिखिया तरे, जल तू वै बहु देह अनीत, शुद्ध का हुए काची पीत, मन हर के नाम की महिमा ऊच, मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतित बहुमूच, बहुत सियान पजम का पौ व्याप है, अनेक जतन कर त्रिशन ना त्राप है, पेक अनेक अग्नि बुझे, कूट उपाव दर्द नहीं सिजय, छूट सनाही उपयाल, वोहि व्यापह माया जाल, अवर कर तू सगली जिम डाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने, हर का नाम जप दुख जाए, नानक बोले सहज सुभाए, चार पदार्थ जेको मागे, साध जना की सेवा लागे, जेको अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय शुद्ध गावे, जी को अपनी शोभा लूरे, सास संगे हो मैं छूरे, जी को जन्म मरण ते डरे, साध जना की सरनी परे, जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानक ताके बल बल जासा, सगल पुरख में पुरख प्रधान, सास संग जाका मिटे अभिमान, आपस कौ जो जाने नीचा, सो गणिये सब ते उचा, जाका मन हुए सगल की रीना, हर हर नाम तिन कट कट चीना, मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखे सगल श्रेष्ठ साजना, सुख दुख जन सम दृष्टिता, नानक पाप पुन नहीं लेपा, निर्धन को धन तेरो नाओ, निथावे कौ नाओ तेरा थाओ, निमाणे कौ प्रभ तेरु मान, सगल कटा कौ देव दान, करण करावन हार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी, अपनी गत मित जान हो आपे, आपन संग आप प्रभ राते, तुमरी उस्त तुम ते हुए, नान कवर न जान सुकोए, सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म, सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मल हिरया, सगल उद्यम है उद्यम पला, हर का नाम जप हो जी सदा, सगल बानी में अमृत बानी, हर को जासु सुन रसन बखानी, सगल थान ते उत्तम थान, नानक जेह कट वसै हर नाम सलोक, निर्गुण यार इयानिया, सो प्रभ सदा समाल, जिन किया तिस चीत रख, नानक निभहि नाल, अष्टपदि रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तुम साज सवार सिगारिया, गर्भ अग्न में जिन्हें उबारिया, बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध, पर जोबन भोजन सुख सूद,
बिरद भया उपर साक्षैन मुख पयाओ बैठ को दैन। एहो निर्गुण गुण कछु न बूझै बख्श ले हो तो नानक सीझै। जेह प्रसाद तारू पर सुख बसै सुत प्रात मीत बनता संघसै। जेह प्रसाद पीवह शीतल जला सुखदाई पवन पावक मुल्ला। जेह प्रसाद भोगह सबरसा सगल समग्री संग साथ बसा। दीने हस्त पाव करनित रसना तिसह त्यागवर संग रचना। ऐसे दोख मूढ़ंद ब्यापे नानक काढ़ लेहु प्रभ आपे। आदंत

मन हिलावै जो ठाकुर सद सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जाकी टहलो पावे दरगह मान तिसे बिसारे मुग्ध अजान सदा सदायो भूलनहार नानक राखन हार अपार रतन त्या कौटी संग रचै साच छोड़ झूठ संग मचै जो चढ़ना सो अस्थिर कर मानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाई तिस पर हरै चंदन लेप उतारै धोए गर्द विपरीत भस्म संग होए अंधकूप में पतित बिकराल नानक काड लेहु प्रभ दया करतूत पशु की मान सजा लोक पचारा करै दिन रात बाहर भेख अंतर मल माया छपस नाही कछ करै छपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापै लोभ सुवान अंतर अगन बाहर तन स्वाहा गल पाथर कैसे तरह अथाहा जाके अंतर बसै प्रभ आप नानक तेजन सहज समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावै कर गहले हो ओढ़ निभावै कहा बुझारत बूझै डूरा निष्कहिय तो समझे पूरा कहा विष्णु पद

नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाई सुवावै न चीत जो बैराई तासु प्रीत बलुआ के गृह भीतर बसै अनद केल माया रंग रसै दृढ़ कर मन मने प्रतीत काल न आवै मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोभ त्रोह याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लेहु आपन कर करम तू ठाकुर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुम्हारी कृपा मह सुख कनेरे कोई न जाने कुबरायत कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समगरी तुमरै सूत्र धारी

सदा कुर्बानी। सलोक दीन हार प्रभ छूट कै लग है आन सुआए, नानक कहू न सीजई बिन नावै पत जाय। अष्टपदी दस वस्तुले पाछे पावै, एक वस्त कारण बिखूट गवावै। एक भी ना दे दस भी हिरले, तौ मूड़ा कहु कहा करे। जिस ठाकुर स्यो नाही चारा, ताकौ कीजै सद नमस्कारा। जाके मन लागा प्रभ मीठा, सर्व सुख ताहू मन उठा। जिस जने अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया।

अज्ञानी मन रूस करे, अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बहुर उसका विश्वास न होवे, जिसकी वस्त से आज्ञा राखे, प्रभ की आज्ञा मन माथे, उसते चौगुण करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। अनिक पात माया के हेत, सर पर होवत जान अनेत, बिर की छाया स्यो रंग लावे, ओ बिन सै मन पछतावे, जो दिसै सो

मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप ले लाई। मिथ्या तन धन कुटुंब सुबाया, मिथ्या होमै ममता माया। मिथ्या राज जोगन धन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल। मिथ्या रथ हस्ती अश्व वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता। मिथ्या ध्रुव मोह अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर करत बमान। अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवै हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है, मिथ्या हस्त पर दर्व को गिर है। मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अन्न स्वाद। मिथ्या चरण पर बेकार कौताव है, मिथ्या मन पर लोभ लुभावै। मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत बिकारा। बिन बूझे मिथ्या सब पहे, सफल देहे नानक हर हर नाम लये। बिरथी साकत की आर जा, साच बिना कहोवत सूचा। बिरथा नाम बिना तन अंध, मुखावता कै दुर्गंध। बिन सिमरन दिन रैन बृथा बिहाए, मेघ बिना ज्यों खेती जाए। गोबिंद भजन बिन बृथे सब काम, ज्यो किरपन के निरार्थ दाम। धन धन ते जन जे घट बस्यो हर नाओ, नानक ताकै बल बल जाओ। रहत अवर कछवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुख हो गंड लावत। जाननहार प्रभु परबीन, बाहर पेख न काहू पीन। अवर उपदेश आप न करै, आवत जावत जन्मै।

तुम पाने तिन प्रभ जाता नानक उनजन चरण पराता। करूं बेनती पार ब्रह्म सब जानै।

नानक जस कहे। जे प्रसाद सुनहै करन नाद, जे प्रसाद पिखै बिस्मात, जे प्रसाद बोलै अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सहजी बसना, जे प्रसाद हस्त कर चल है, जे प्रसाद संपूर्ण फल है, जे प्रसाद परम गत पाव है, जे प्रसाद सुख सहज सुमाव है। ऐसा प्रभु त्याग वर कत लागहु, गुर प्रसाद नानक मन जागहु, जे प्रसाद तुम प्रगट संसार, तिस प्रभु को मूल न मनहु बिसार, जे प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूड तूता कहो जाप, जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे, तिसै जान मन सदा हजूरे, जे प्रसाद तू पाव है साच, रे मन मेरे तू ता सिवराच, जे प्रसाद सब की गत हुए, नानक जाप जपै जप सोए, आप जपाए जपै सो नाओ, आप गावाए सो हर गुण गाओ, प्रभ कृपा ते हुए प्रगास, प्रभु दया ते कमल विगास, प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए, प्रभ दया ते मातु तम होए, सर्व निदान प्रभ तेरी मया, आपहु कछु न किन्हु लया, जित जित लाभ हो तित लगै हर नाथ, नानक इनकै कछु न हाथ, श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कह सुमुक्ता होए, सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचर्ज कथा अष्टपदी। साध के संगमुखु जल होत, साध संग मिल सगली खोत, साध के संग मिटै अभिमान, साध के संग प्रगटै सुग्यान, साध के संग बुझै प्रभ नीरा, साध संग सब होत नबेरा, साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा बरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी, साध के संग अगोचर मिले, साध के संग सदा प्रफुल्ले, साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा, साध संग हुए सब कीरेन, साध के संग मनोहर बैन, साध के संग न कतहुं तावै, साध संग स्थित मन पावै, साध के संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभ सुप्रसन्न, साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत, साध संग किस्यो नहीं।

परमानंदा साध अंग नाही होता साध के संत जय सबे आपे जाने साध बड़ाई नानक साध प्रभु बने आई साध के संग न कब हुतावे साध के संग सदा सुख पावे साध संग बस्त गोचर लह साधु कै संग अजर सह साध के संग बसै थान उच्चे साधु कै संग महल पहुँचे साध के संगड़े सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान साध के संग सब कुल उधार है साध संग साजन मीत कुटम निष्ठार है साधु कै संग सो धन पावे जिस धन ते सब को बरसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप लायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सब थान गम नानक साध के संग सफल जनम साध के संग नहीं हों काल दर्शन भेटत होत निहाल साध के संग कलुखत हरै साध के संग नरक पर हरै साध के संग इहां उहां सुहेला साध संग बिछरत हर मेला जो इच्छै सोई फल पावै साध के संग न बिरथा जावै पार ब्रह्म साध रिद बसै नानक उदरै साध सुन रसै साध के संग सुनो हर नाओ साध संग हर के गुण गाओ साध के संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साध के संग लगै प्रभ मीठा साधु कै संग घट घट डीठा।

साध की शोभा मूछते मूछी, साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेख एकस बिन कोए, नानके लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हो अष्टपदी, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप हो, जैसे जल में कमल अलेप हो। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्व कौ सोख, ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान, जैसे राज रंखो लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक, ज्यो बसला को खुदै को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ, नानक जो पाव का सह सुभाओ। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए प्रगास, जैसे तारू पर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी के मित्र शत्रु समान, ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपना है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पए, नानक जिन प्रभ आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक प्रयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा। ब्रह्म ज्ञानी कहना ही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कह हुए सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कह रंग, ब्रह्म ज्ञानी कह

ब्रह्मज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत, ब्रह्मज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्मज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्मज्ञानी एक संहिता, ब्रह्मज्ञानी कै हुए चिंत, ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्मज्ञानी जिस करे प्रव्याप, ब्रह्मज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्मज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाई है, ब्रह्मज्ञानी को खोज महेश्वर, नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्मज्ञानी कै सगल मन माहे, ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्मज्ञानी कौ सदा आदेश, ब्रह्मज्ञानी का कथिया न जाय अदाक्षर, ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्मज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्मज्ञानी की गात ब्रह्मज्ञानी जाने, ब्रह्मज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्मज्ञानी कौ सदा नमस्कार, ब्रह्मज्ञानी सब सृष्ट का कर्ता, ब्रह्मज्ञानी सद जीवे नहीं मरता, ब्रह्मज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्मज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्मज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्मज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्मज्ञानी की शोभा ब्रह्मज्ञानी बनी, नानक ब्रह्मज्ञानी सर्व का धनी, श्लोक पुर धार है जो अंतरना, सर्व मैं पिक है भगवान, निमक निमक ठाकुर नमस्कार है, नानको पर सगल निस्तार है, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना पर सुमन मैं प्रीत निरंजन, दर्श पर त्रै रूप न पिक है, नेत्र साध की टहल संसंग हेत, कर न सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद भिख्या पर हरय, मन की वासना मन ते टरय, इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कूट मध्य को ऐसा, पर सुबह सुनो सो जी सुपर सो प्रसान, विष्ण की माया ते हुए भिन्न, कर्म करत हो वह नहीं कर्म, तिस बह सुनो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बाछय, केवल भगत कीर्तन संग्राचय, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ वरह नाम जपावे, नानको वैष्णो परम गत पावे, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग, मन ते बिनस सगला परम, कर पूजे सगल पार ब्रह्म, सासंग पापा मल खूवे, तिस भगवती की मत उत्तम होवे, भगवंत की टहल करे नित नीत, मन तन अर्पै विष्ण परीत, हर के चरण हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे, सो पंडित जो मन पर बुद्ध है, राम नाम आत्म शुद्ध है, राम नाम सारस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे, हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जो ननाया वै, वेद प्राण सिमृत बूझे मूल, सूखम मै जाने अस्थूल, चौवरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा देश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवरना मैं जपै को नाम, जो जो जपै तिसकी गत हुए, सा सुन पावे जन कोए, कर कृपा अंतर उरता है, पस प्रेत मुक्त पाथर कौतार है, सर्व रोग का उखद नाम, कल्याण रू मंगल गुण गाम, काहू जुगत के तय न पाइय धर्म, नानक जिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म, जिसका मन पार ब्रह्म का निवास, जिसका नाम सतराम दास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास संतन पाई तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दर गए परवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सो जी परे, सगल संगात मोदास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभु की आज्ञा तुम हितावे, जीवन मुक्त सो कहावे,
तैसा हरक तैसा उसोग, सदानंद तै नहीं वियोग। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी भिख काटी। तैसा मान तैसा विमान, तैसा रंक तैसा राजा, जो वरताए साई जुगत, नानको पुरख कही है जीवन मुक्त। पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित कर राखै तैसा तिन नाओ। आपे करन करावन जोग, प्रभावै सोई फुन होग। पसरो आप अंत तरंग, लखे न जाहि पार ब्रह्म के रंग। जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता विनाश। सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक भये निहाल। श्लोक पुस्तक करे अनेक जानंत न पारावार, नानक रचना प्रवरची बहुविध अनेक प्रकार। षष्ठपदी कई कोट हुए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट बन प्रमय उदासी। कई कोट वेद के श्रोते, कई कोट तपिसर होते, कई कोट आत्म ध्यान धार है, कई कोट कब का विचार है, कई कोट नवतन नाम त्याव है। नानक करते कांत न पावे, कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अभिगात्म निकोर। कई कोट पर दर्व को ही रह, कई कोट पर दुख न कर है, कई कोट माया श्रमाहे, कई कोट पर देश परमाहे। जित जित लाभ हो तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना। कई कोट सिर जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प पाए, कई कोट पाथर बिरख निप जाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट सस्यर सूर नखियत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र। सगल समग्री अपने सूत धारै, नानक जिस जिस भावै तिस तिस निस्तारै। कई कोट राजस तम सातक, कई कोट वेद प्राण सिमरतर शास्त्र, कई कोट कीर्तन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत। कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरि मेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जतिन्र पिसाच, कई कोट भूत परे सुकर मिर्गाच। सब ते नेरै सब हुते दूर, नानक आप लिप्त रहा भरपूर। कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म जीव मरे, कई कोट बोजूनी फिर है, कई कोट बैठत ही खाए, कई कोट कालै थक पाहे। कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जय जय पाणा तह तह राखे, नानक सब कुछ प्रभ कै हाथे। कई कोट भय वैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ को खोजनते, आत्म है पार ब्रह्म लहनते। कई कोट दर्शन प्रप्यास, तिनको मिलो प्रभ विनाश, कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग। जिनको हो आप सुप्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन। कई कोट काणी अर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट हो अवतार, कई जुगत कीनो विस्तार। कई बार पसरियो पासार, सदा सदा के कंकार, कई कोट कीने बहुपात, प्रभते हुए ब्रह्मा ही समाता। कंत न जाने कोय आपे आप, नानक प्रभ सोए। कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म प्रगास, कई कोट तत् के बेते सदा निहारे को नेत्रे। कई कोट नाम रस पीवै, अमर भय सत सद ही जीवै, कई कोट नाम गुण गावै, आत्म रस सुख सह समावै। अपने जन को साथ साथ सुमारे, नानक होए परमेश्वर के प्यारे। श्लोक करण कारण प्रभे कहै, दूसर नाही कोय, नानक तिस बलिहारणै जल थल महील सोय। अष्टपदी करण करावन करनै जोग, जो तिस भावै सोई हो, किन मैं थाप थापन हारा, अंत नहीं किछ पारा वारा। हुक्मे धार धर रहावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै, हुक्मे ऊच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार।
कर कर दिखे अपनी वडियाई, नानक सब में रिहा समाई। प्रभावै मानुख गत पावै, प्रभावै तां पात्र तरावै। प्रभावै बिन सास्ति राखै, प्रभावै तां हर गुण भाखै। प्रभावै तां पति तुधारै, आप करै अपन बिचारै। दुहा सिरियां काप स्वामी, खिलै बिकसै अंतर जामी। जो पावै सो कार करावै, नानक दृष्टि अवर न आवै। कहो मानुख ते क्या होए आवै, जो तिस पावै सोई करावै। इसके हाथ होए ता सब किच ले, जो तिस पावै सोई करे। अनजानत बिखिया महरचै, जे जानते अपन आप बचै। भरमी भूला दह दिस्तावै, निमक माय चार कुंट फिर आवै। कर कृपा जिस अपनी भगते, नानक ते जन्ना मिले। खिन मैं नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब निवास। जा का दृष्ट कछु न आवै, तिस तत्काल दह दिस प्रगटावै। जा को अपनी करै बख्शीस, ताका लिखा न गनै जगदीश। जीव पिन सब तिस की रास, घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास। अपनी बनता बनाई, नानक जीवै देख बढ़ाई। इसका बल नाही सहात, कर्म करावन सर्व को नाथ। आज्ञाकारी बपुरा जियो, जो तिस पावै सोई पुन थियो। कबू ऊच नीच में बसै, कबू सोग हरख रंग हसै। कबू निंद चिंद

साथ, कबू सोए रह दिन रात। कबहू महाक्रोध विकराल, कबहू सर्व की होत रवाल। कबहू हुए बह बड़ राजा, कबहू पेखारी नीच का साजा। कबहू अपकीर्त मह आवै, कबहू भला भला कहावै। ज्यो प्रभु राखै तिव ही रह, गुर प्रसाद नानक सच कहै। कबहू हुए पंडित करे बख्यान, कबहू मोन धारी लावै ध्यान। कबहू तट तीर्थ स्नान, कबहू सिद्ध साधिक मुख ज्ञान। कबहू कीट हस्त पतंग हुए जिया, अनिक जोन पर मैं परमिया। नाना रूप ज्यो सुहागी दिखावै, ज्यों प्रभावै तिवै नचावै। जो सुभावै सोई हुए, नानक दूजा अवर न कोए। कबहू सा संगत उपावै, उस स्थान ते बहुर न आवै। अंतर हुए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश। मंत्र नामृति करंग, सदा बसह पार ब्रह्म कै संग। ज्यों जल मैं जले आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुरबान। सलोक सुखी बसै मस्कीनिया, आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया। नानक गर्भ गले अष्टपदी, जिसके अंतराज अभिमान। सो नरक पाती होत स्वान, जो जाने मैं जो बनवंत। सो होत बिष्टा का जंत, आपस को करवंत कहावै। जन्म मरे भोजन परमावै, तन भूमिका जो करे गुमान। सो मूर्ख अंधा ज्ञान, कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै। नानक हा मुक्त आगे सुख पावै, धनवंता होई कर गरबावै। तृण समान का संग न जावै, बहुलस्कर मानुख ऊपर करे आस। फल भीतर ताका हुए विनाश, सब ते आप जाने बलवंत। किन मैं हुए जाए पसमंत, किसे न बदे आप अहंकारी। धर्म राय किस करे कुवारी, गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान। सूजन नानक दरगह परवान, कोट कर्म करे हों तारी। श्रम पावे सगले बिरतारी, अनक तपस्या करे अहंकार। नरक सुरक फिर अवतार, अनिक जतन कर आत्म नहीं द्रवै। हर तर कह को कैसे गवै, आपस को जो भला कहावै। तिसे भलाई निकट न आवै, सर्व की रेन जाका मन हुए। कहो नानक ताकि निर्मल सोए, जब लग जाने मुझते कछ हुए। तब इसको सुख नाही कोए, जब ए जाने मैं किच करता। तब लग गर्भ जोन मैं फिरता, जब तारे को वैरी मी। तब लगने चर नाही चीत, जब लग मोह मगन संगमाए। तब लग धर्म राय दे सजाए, प्रभु कृपा ते बंधन टूटै। गुर प्रसाद नानक हो छूटै, सहज खटेला कोट तावै। तृप्त न आवै माया, पाचै पावै भोग विकिया के करै। नै तृप्तावै खप खप मरै, बिना संतोख नहीं को राजै। सुपन मनोरथ वृथे सब काजै, नाम रंग सर्व सुख होए। बडभागी किसे प्राप्त होए, करण करावन आपे आप। सदा सदा नानक हर जाप, करण करावन करण हार। किसके हाथ कहा विचार, जैसी दृष्ट करे तैसा हुए। आपे आप प्रभु सोए, जो किच कीनो सो अपने रंग। सब ते दूर सबू कै संग, बूझै देखे करे विवेक। अपहे कपहे अनेक, मरे न बिनसै आवै न जाए। नानक सद ही रहा समाए, आप उपदेशै समझै आप। आपे रचिया सब कै साथ, आप कीनो अपन विस्तार। सब कछु सुखाव करने हाथ, उसते भिन्न कहो किछ होए। थान तनंतर एक सोए, अपने चलताव करने हार। कौत करे रंग आपार, मन मया मन अपने माहे। नानक कीमत कह न जाए, सत सत सत प्रभु स्वामी। गुरु प्रसाद किने विख्यानी, सच सच सत सब कीना। कोट मदे किने बिरले चीना, भला भला भला तेरा रूप। असुंदर अपार अनूप, निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी। घट घट सुनी श्रवण बख्यानी, पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत। नाम जपै नानक मन प्रीत। श्लोक संत सरण जो जन परै, सो जन उदरन हार। संत की निंदा नानका, बहुर बहुर अवतार अष्टपदी। संत कै दुखन आर जा कटै, संत कै दुखन जम ते नहीं छुटै। संत कै दुखन सुख सब जाए, संत कै दुखन नरक में पाए। संत कै दुखन मत हुए मलीन, संत कै दुखन सोभा ते हीन। संत के हते को रखै न कोए,
संत कै दुख अंथान भ्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जी करै, नानक संत संग निंदक पीतरै। संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन काग ज्यों लवै, संतन कै दुखन सर्प ज्यों पाए, संत कै दुखन त्रिगत ज्यों किरमाए, संतन कै दुखन तृष्णा मैं जलै, संत कै दुखन सब को छलै, संत कै दुखन ते सब जाए, संत कै दुखन नीच निचाए, संत दुखी का थाउ को नाहे। नानक संत भावै तोय भीगत पाहि, संत का निंदक मात ताहि, संत का निंदक तिन टिक न पाहि, संत का निंदक महत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखी हर दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा विजोग, संत की निंदा दोख में दोख, नानक संत भावै तो उसका भी हुए मोख। संत का दुखी सदा पवित्र, संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत के दुखी को डाल लाग गए, संत के दुखी को सब त्याग गए, संत का दुखी माँ अहंकारी, संत का दुखी सदा विकारी, संत का दुखी जन्म मरे, संत की दुख ना सुख ते टरे, संत के दुखी को ना ही ठाओ, नानक संत भाव है ता ले मिलाए, संत का दुखी अद बीच ते टूटे, संत का दुखी कितै काज ना पहुंचे, संत के दुखी को ध्यान फरमाइए, संत का दुखी उजड़ पाइए, संत का दुखी अंतर ते थोथा, ज्यों सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किच नाहे, आपन बीजा पे ही काहे, संत के दुखी को वरना राखन हार, नान संत भावे त लय उबार, संत का दुखियों बिल लाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजे, ज्यों पाव किंदर नहीं त्रापै, संत का दुखी छुट्टै केला, ज्यों बुआड़ तिलखेत माही दुहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथिया कहत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानक जो तिस पावै सोई थया, संत का दुखी बिगड़ रूप होय जाए, संत के दुखी को दरगह मिलै सजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी न मरे न जीवाई है, संत के दुखी की पूजै नयासा, संत का दुखी उठ चलै निरासा, संत का दुख न त्रिष्टै कोई, जैसा पावै तैसा कोई होए, पै कृत न मिटै कोई, नानक जानै सच्चा सोए, सब घट तिसके उकरनै हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की स्तुति करू दिन रात, तिसै त्यावो सास गिरात, सब कछु वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा कोथी, अपना के लाभ करनै हार, दूसर कौन कहै विचार, जिसनु कृपा करै ते सब नाम दे बड़भागी, नानक जन से श्लोक तजो सियानप सुर जनो सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख भरम पौ जाए अष्टपदी, मानुकी टेक वृत्ति सब जान देवन को एकै भगवान, जिसकै दिए रहे अघाए, बहु न तृष्णा लागै आए, मारै राखै कुआ, मानुकै किछु नाहि हा, तिसका हुकुम सुखोए, तिसका नाम रकंठ पुरोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन न लागै कोई, उस्तन मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पीओ, सदा सुहेला कर लह जियो, नैनो पेख ठाकुर का रंग, सा संग बिन सह सब संग, चरण चलो मार गो बिंद मिटै पाप जपिए, हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानकू जल मत्था बिड़भागी, ते जन जग माही, सदा सदा हर के गुण गाही, राम नाम जो करै विचार, उसे तनवंत गणी संसार, मन तन मुख बोलै हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछानै तुत कियो सूझी जानै, नाम संग जिसका मन मान्या, नानक तिन्हें निरंजन जानिया, गुर प्रसाद अपना सुजै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै, साध संग हर हर जस कह तो, सर्व रोग त्यो हर जन रह तो, वंदन कीर्तन केवल बख्यान, कृष्ण में सोई निर्वाण, एक ऊपर जिस जन किया सा, तिसकी कटिया जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक दिसै न लागै दुख, जिसको हर ब्रह्मन चित आवै, सो संत सुहेला नहीं दुलावै, जिस प्रभु अपना कृपा करै, सो सेवक को किस ते डरै, जैसा सत सत दृष्टाया, अपने कार्ज में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुर प्रसाद तत् सबूजिया, जब देखो तब सब किछ मूल, नानक सो सुखम सोई स्थूल, न किछ जन्मे न किछ मरै, अपन चल ताप ही करै, आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब सृष्टि, आपे आप सगल मै आप, निक जुगत रचि ताप ताप, अविनाशी नाही किछ खंड, धारन धारहु ब्रह्मांडल, कपे पुरख प्रताप, आप जपाए तां नानक जाप, जिन प्रभ जाता सो सो बावंत, सगल संसार उतरै तिन मंत, प्रभ के सेवक सगल उदाहरण, प्रभ के सेवक दुख विसारण।
ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰ ਕਾ ਸਭ ਜਪੈ ਨਿਹਾਲ ਉਨਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋਈ ਲਾਗੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਬਿਡਭਾਗੈ ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਵਿਸਰਾਮ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪੁਰਖ ਉੱਤਮ ਕਰਮਾ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੁਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਸੈ ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਿ ਸੁਭਾਇ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਏ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਪਛਾਣੈ ਸੋਏ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਮਾਏ ਸਮਾਏ ਉਏ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਆਪਸ ਕੋ ਆਪ ਦੀਨੋ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜਨ ਏਕੋ ਜਾਨ ਸਲੋਕ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਨਣ ਹਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੀਐ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਟੂਟੀ ਗਾਡਨ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਰਬ ਜੀ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਵਾਹੀ ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪ ਅਵਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪਣ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ ਜੇ ਸੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲੋਚੈ ਕੋਏ ਤਿਸ ਬਿ ਨਾਹੀ ਤੇਰੈ ਕਿਛ ਕਾਮ ਗਤ ਨਾਨਕ ਜਪੇ ਕਰ ਨਾਮ ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਏ ਨਾਹੀ ਮੋਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋ ਹੈ ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਬ ਹੈ ਜਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਕਾ ਦਰਿਆ ਦਰਬੈ ਆਦਿ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋ ਕਹਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹਿਤਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਬਹਿ ਦਾ ਤਾਰ ਤਿਸ ਦੇਨ ਹਾਰ ਜਾਨੈ ਗਾ ਵਾਰ ਜਿਸ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਟੁੱਟੈ ਹੋ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਸਦਾ ਅਰੋਗ ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥੰਮਨ ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸਥੰਮਨ ਜਿਉ ਪਾਕਾ ਨਾਵ ਚੜ੍ਹਤਰੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਗਤ ਨਿਸਤਰੈ ਜਿਉ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸ ਜਿਉ ਮਾਉ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ ਤਿਉ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਛੋ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰ ਲੂਚਾ ਪੂਰ ਮਨ ਮੂਰ ਕਾਹੇ ਬਿਲ ਲਾਈਐ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵ ਨਹਾਰ ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਤੂ ਤਿਸੈ ਚਿਤਾਰ ਜੋ ਕਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖਮਾਨ ਭੁੱਲਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰੈ ਅਜਾਨ ਕੌਣ ਬਸਤਾਈ ਤੇਰੈ ਸੰਗ ਲਪਟਰਿਓ ਰਸ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਪਤ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਜਾਏ ਜਿਸ ਵੱਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤਾਜਬ ਮਾਨ ਲਿਹੋ ਮਨ ਮੂਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮਹਿਤੂਲ ਲਾਦ ਖੇਪ ਸੰਤੈ ਸੰਚਾਲ ਅਵਰ ਥਿਆ ਵਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ ਧਨ ਧਨ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਏ ਮੁਖੂ ਜਲ ਹਰ ਦਰ ਗੈ ਸੋਏ ਇਹੋ ਵਾਪਾਰ ਵਿਰਲਾ ਵਾਪਾਰ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਹਿ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ਹੈ ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਉ ਅਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਉ ਸਾਧ ਕੀ ਧੂੜ ਕਰੋ ਇਸਨਾਨ ਸਾਧ ਉੱਪਰ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਏ ਸਾਧ ਸੰਘਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਏ ਅਨਿਕ ਬਿਘਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰਾਖੈ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖੈ ਓਟ ਗਈ ਸੰਤੈ ਦਰਿਆਇਆ ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਾਇਆ ਮਿਰਤਾ ਕਉ ਜੀ ਬਾਲਨ ਹਾਰ ਭੁੱਖੇ ਕਉ ਦੇਵਤ ਆਧਾਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ ਪਾਏ ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਕਾਉ ਕਰਨੈ ਜੋਗ ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਹੋਆ ਨਾ ਹੋ ਜਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਨਿਰਮਲੇ ਕਰਨੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀਆ ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀਤ ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਣੀਐ ਤਿਉਲ ਹੋਏ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਕੋ ਹੋਏ ਸਚ ਕਰਨੀ ਸਚ ਤਾ ਕੀ ਰਹਿਤ ਸਚ ਹਿਰਦੈ ਸਤ ਮੁਖ ਕਹਿਤ ਸਾਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਚ ਆਇਆ ਕਾਰ ਸਚ ਵਰਤੈ ਸਚ ਆਪਾ ਸਾਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸਚ ਕਰ ਜਾਤਾ ਨਾਨਕ ਸੂਜਨ ਸਚ ਸਮਾਤਾ ਸਲੋਕ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖ ਨ ਰੰਗ ਕਿਛ ਤ੍ਰਿਉ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ ਕਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੈ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅਵਨਾਸੀ ਬ੍ਰਹਮਨ ਮੈਂ ਰਾਖ ਮਾਨੁਕ ਕੀ ਤੂ ਪ੍ਰੀ ਤਿਆਗ ਤਿਸ ਤੇ ਪਰੈ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਕੋਈ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਗਹੀਰ ਸੁਜਾਨਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਿਆਲ ਬਖਸੰਦ ਸਾਧ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਉ ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨ ਹੋ ਅਨੁਰਾਉ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਸਰਨਾ ਜੋ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋਵ ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨੇਤਰ ਹੋਰ ਤਿਸ ਕਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੋਰ
आनंद रूप मंगल सजा कै सर्व थोक सुनिया घर ता कै राज में राज योग में जोगी तप में तपिश्वर विष्ट में भोगी त्याय त्याय भगत सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया जा की लीला कीमत नाही सगल दीवारे बगाही पिता के जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जिन दास नाम त्या वैसे त्यो गुण मैं जाकु परमाई जन्म मरा फिर आवै जाय ऊच नी तिसके स्थानू जैसा जनावै तैसा नानक जानू नाना रूप नाना जाके रंग नाना भेख करै एक रंग नाना बिद किनो विस्तार रब बनासी एक अंकार नाना चलत करे

तू सतगुरु जिस हृदय हर नाओ, अनेक बार गुरु को बल जाओ। सर्व निदान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्मता ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म एक अब नहीं कच परम सह सियान पलया ना जाइये नानक ऐसा गुरु कृपा की पाइये। सफल दर्शन पेखत पुनीत पर सत चरणगत निर्मल रीत पेठ संग्राम गुण रवे पार ब्रह्म की दर गह कवे। सुनकर बचन करन आघाने मन संतो का तम पतियाने पूरा गुर अखियो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेखे हुए संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नान जिस पावे दिसले मिलाए जी भाई कुछ तनेक सतपुर पूर्ण भवे। काहु बोलना पोचर प्राणी अगम गोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वय सुखदाई ताकि कीमत किन न पाई। अनिक भगत बंधन नित करे चरण कमल हृदय सिमर सद बलिहारी सतगुरु अपने नानक जिस पर साध है सा प्रभ जपने। युवा रस पावे जिन को अमृत पीवे अमृत सो इस पुर का नाही कदे बिना जा कै मन प्रगटे गुणदास। आठ पैर हर का नाम ले सच बदे सेवक को दे मोह माया कै संग न ले मन में रखे हर हर एक। अंधकार दीपक पर गासे नानक परमो दुख तैते ना से तप्त माय ठाट वरता इन भया दुख नाटे भाई। जन्म मरण के मिटे अंदेशे साधु के पूर्ण उपदेशे पाव चुका निर्भोहे बसे सगल व्याध मन ते कह न से जिसका सातन कृपा धारी। सा संग जप नाम मुरारी थित पाई चुके ब्रह्म गवन सुन नानक हरा जिस श्रवण निर्गुण आप सरगुण पियो ही। कलाधार जिन सगली मोही अपने सिरपुरा बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिंदु जा नाही कोई सर निरंतर इको सोए बोध पुत्र व्या रूप रंग पाए प्रगा साध के संग रच रचना अपनी कलधारी। अनिक बार नानक बलिहारी सलोक साथ न चाले बिन भजन बिखिया सगली चार हर हर नाम कमावना नानक तन सारस्पदी। संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर पाव संबीत विसारू चरण कमल हृदय में उतारू करण कारण सो प्रभ सम्राट दृढ़ कर गहु नाम हरवत। हे तन संचो हो भगवंत संत जना का निर्मल मंत्र का सुरा कुमन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिस तन को चार कुंट टूटता वै सो तन हर सेवा ते पावे। जिस सुख को नित बाचै मीत सो सुख साधु संग परी जिस सोभा को करे पली करनी सा सोभा भज हर की सरनी अनिक पावी। रोग न जाए रोग मिटे हर खद लाए सर्व निदान में हर नाम निदान जब नानक दर गय प्रवान। मन प्रभु दो हर कह नाए दा दिस्तावता बैठाए ताको बिघन न लागे कोई जा कर दे बसै हर सोई। कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पौ बिन सह पूर्ण होया भगत पाया तुम प्रगास। तित कर जाए बसै बनासी कौ नानक काटी जम फासी तत विचार कह जन साचा जन मरै सो काचू काचा। आवागमन मिटै प्रभ सेवा त्याग शरण गुरुदेव क्यों रतन जन्म का हुए उधारू हर हर सिमर प्राण आधार अनेक पावना छूटन हारे। सिमरत शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन वंचित नानक फल पाए। संग न चालस तेरे तना तू क्या लुपटावे मूर्ख मना सुत मीत कुटम्बर बनता इनते कहो तुम कवन सुनाता। राज रंग माया विस्तार इनते कहो कवन छुटकार अस हस्ती रथ सुवारी झूठा डंभ झूठ पासारी। जिन दिए तिस बुझे न बिगाना ना विसार नानक पछताना गुर की मत तू ले आने। भगत बिना बो डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारू चीत चरण कमल राखु मन माहे। जन्म जन्म के किल विख जाहे आप जपो अवरा नाम जपावो सुनत कैत रहत गत पावो सार भूत सत हर को नाव सह सुभाए नानु गुण गाओ। गुण गाओ तेरी उतर समैल बिन सजाए हो मैं बिख फैल हुए अचिंत बसै सुख नाल सास ग्रासर नाम संभाल छाड़ सियानप सगली मना साध संग पावे सच तना हर पूंजी संच करो बिहार इहां सुख दरगह जयकार। सर्व निरंतर एको दे कौ नानक जाके मस्तक लेख एको जप एको सालाहे एक सिमर एको मन आहे किसके गुण गाओ अनंत। मन तन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूर्ण पूरे हो प्रभ्याप। अनिक विस्तार एक दे भय करात प्राचित गए मन तने अंतर एक प्रवरता गुर प्रसाद नानक एक जाता। श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया पर तो शरणाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाइष्ट पदी जाचक जन जाचे प्रभदान कर कृपा देवो हर नाम।
साजना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभु के गुण गावो सास सास प्रभु तुम्हें त्या हूँ चरण कमल सिंह लाग प्रीत भगत करूं प्रभु की नित नीते कोटि को आधार नानक मांग नाम प्रभु सार प्रभु की दृष्ट मां सुख हुए हरस पावे बिरला कोई जिन चाख्या से जिन तृप्ता ने पूर्ण पुरख नहीं डोला नहीं सुपार परे प्रेम रस रंग उपजय चाव साध कै संग परे शरणान सब त्याग अंतर प्रकाशन दिल विलाग बट भागी जपया प्रभु सोए नानक नाम रत्ते सुख हुए सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभु होयो दयाल सेवक की नु सदा निहाल बंधन काट मुख जन भया जन मरण दुख भ्रम गया इच पुन्नी श्रद्धा सब पूरी रब रहा सत्संग हजूरी जिसका साथ इंदिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरै जे काल न पाने सो क्यों बिसरै जे की आ जाने सो क्यों बिसरै जिन सब किस दिया सो क्यों बिसरै जी जीवन जिया सो क्यों बिसरै जे अगन मैरा कह गुर प्रसाद कुबिर लाला कह सो क्यों बिसरै जी बिकति काट है जन्म जन्म का टूटा काट है गुर पूरे तथे है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो ए काम आन त्याग जपूहर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपू हवरै नाम जपावो भगत पाए तरिया संसार बिन भक्ति तन हो सी चार सर्व कल्याण सुख निध नाम बूट जात पाए विश्राम सगल दुख का होवत नास नानक नाम जपो गुणता सुख जी प्रीत प्रेम रस जाओ मंथन अंतर ही सुहाव नेत्रो पेक दर सुख होए मन विकसै सात चरण धोए भगत न कह मंत्र रंग बिरला को पावै संग एक बस दीजै कर माया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहा सर्व समाए रब अक्सन दीन दयाल भगत वचन सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आद गुरु कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सोहे पुनीत भगत पाए लावै मन ही हम निर्गुण यार नीच जा नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व वैकुंठ मुक्त मुख पाए करके गुण गाए अनिक राज भोग वड्याई हर के नाम की कथा मन भाई बो भोजन का पर संगीत रसना जपती हर हर नीत भली सु करनी सुभा धनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत साध संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगास लोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप अपन किया नानका आपे ही फिर जाप अस्पदी जब कार्य कछ न दृष्टिता आप हुन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समा तब बैर विरुद्ध के संकमात जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हर सो कौ किस व्यापत जब अपना पाप पार ब्रह्म तम हो का किसोवत परम अपन खेला वृत्ति जा नान करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त को किस को गनी जब एक हरगम पार तब नरक सुर को कौन उतार जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव शक्त कहो कित डाए जब आप है आप अपनी जो तरह तब कवन निडर कवन कत डरै अपन चलताप करने हार नानक ठाकुर पार अविनाशी सुखा प्रणासन है जन्म मरण कहो कहा विनाशन जब पूर्ण करता सोए तब जम की त्रास कहो कि सोए जब अभिगत गोचर प्रवेका तब चित्रगुप्त किच पूछत लेखा जब नाथ निरंजन गोचर गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपन आप आपिए चर जा नानक अपन रूप आपिए पर जा जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तय बिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन कुमान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय छल छिद्र लगत को की जय जो स्वरूप जो संग समावै तय किसै भूकवन तृप्तावै करण करावन करने हार नानक करते का नाहि सुमार जब अपनी शुभ अपन संग बनाई तब कवन माय बा मित्र सुत भाई जय सर्व कला आपै प्रवीण तय वेद कदेव का कूची जब अपन आप आपुर धार है तू सगन सगन कहा विचार है जय अपन ऊंचापन आप नीरा तय कौन ठाकुर कौन कही है चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानु आप जय चल छेद भिस्माया वहां किसे व्याप्त माया पिछकुआ पया देश त्यो गुण का ना ही परवे जय कह एक एक भगवंता तय कौन चिंत किस लाग चिंता जय अपन आप आप त्यारा तय कौन कथे कौन सुन नहारा बहु बेअंत उच ते उच्चा नानका पुष्कुआ पै पहुंचा जय प्रचो प्रपंच कार त्यो गुण मैं किन्नो विस्तार पाप कुंते पै कहावत को नर को स्वर्ग बंचावत हाल जाल माया जंजाल हम मैं मोह भरम पै पार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की उपख्यान आपन खेल आप कर देखे खेल संकोचे तो नानक कह जय विगत भगत है आप जय पसरै पासार संत प्रताप दूपा का पे धनी उनकी शोभा नु बनी
ਆਪੇ ਕੌਤ ਕਰੈ ਆਨੰਦ ਚੋਜ ਆਪੇ ਰਸ ਭੂਗ ਨਿਰਜੋਗ ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਆਪਣਾ ਲਾਵੇ ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਖੇਲ ਖਿਲਾਵੇ ਬੇਸਮਾਰਤਾ ਗੰਤੇ ਅਤੁਲੈ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੈ ਸਲੋਕ ਜੀ ਜੰਤ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪੇ ਵਰਤਨਹਾਰ ਨਾਨਕ ਇੱਕੋ ਪਸਰਿਆ ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਤਿਸਟਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪ ਕਥੈ ਆਪ ਸੁਣੈ ਹਾਰ ਆਪੈ ਕਾ ਵਿਸਤਾਰ ਚਾ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਏ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਲਏ ਸਮਾਏ ਤੁਮ ਤੇ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਿਚੋਏ ਆਪਣ ਸੋ ਸਭ ਜਗਤ ਪਰੋਏ ਜਾਕੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਆਪ ਜਾਏ ਸਚ ਨਾਮ ਸੋਈ ਜਿਨ ਪਾਏ ਸੋ ਸਮਦਰਸੀ ਤਤ ਕਵਿਤਾ ਨਾਨਕ ਸਗੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਜੀਤਾ ਜੀ ਜੰਤਰ ਸ਼ਬਦਾ ਕਹਿਹਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾ ਜਿਸ ਰਾਖੈ ਤਿਸ ਕੋਈ ਨ ਮਾਰੈ ਸੋ ਮੂਆ ਜਿਸ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੈ ਤਿਸ ਤਜ ਤਿਸ ਤਜ ਅਵਰ ਕਹਾ ਕੋ ਜਾਏ ਸਭ ਸ੍ਰੇਖ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਏ ਜੀ ਕੀ ਜੁਗ ਜਾ ਕਹਿ ਸੁਭਾਤ ਅੰਤਰ ਬਾਰ ਜਾਨੋ ਸਾਧ ਗੁਣ ਨਿਦਾਨ ਬੇਅੰਤ ਪਾਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ਪੂਰਨ ਪੂਰੇ ਦਿਆਲ ਸਭ ਉੱਪਰ ਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਤਵ ਜਾਨੈ ਆਪ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਰਹੋ ਵਿਆਪ੍ਰਤ ਪਾਲੈ ਜੀਨ ਬਭਾ ਜੋ ਚੁਰ ਚੁਸ ਤਿਸੈ ਤਿਆ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲੈ ਮਿਲਾਏ ਭਗਤ ਕਰੇ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਮਨ ਅੰਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਮਾਨਿਆ ਕਰਨ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਜਾਨਿਆ ਜਨ ਲਾਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਏ ਤਿਸ ਕੀ ਆਸਨਾ ਬਿਰਥੀ ਜਾਏ ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੇਵਾ ਬਣ ਆਈ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ ਇਸ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬੰਧਨ ਤੋਰ ਭਏ ਨਿਰਵੈਰ ਅੰਦਿਨ ਪੂਜਾ ਗੁਰ ਕੇ ਪੈਰੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭਿਆ ਪਹਿਮੇਲੇ ਸਾ ਸੰਗਲ ਕਰੋ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਪ੍ਰਪਰਮਾਨੰਦ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਤ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਦੁਰਲਭ ਦੇਖਾ ਕਰੋ ਉਧਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਚਨ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਪ੍ਰਾਨ ਤਰਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਭਾਵ ਆਠ ਪੈਰ ਪ੍ਰਪੇਖੋ ਨੇਰਾ ਮਿਟੈ ਗਿਆਨ ਬਿਨਸੈ ਅੰਧੇਰਾ ਸੁਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੈ ਬਿਸਾਵ ਮਨ ਇੱਛੇ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੋ ਹਲਤ ਫਲ ਦੋਇ ਲਿਓ ਸਵਾਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਉਰ ਧਾਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦਿਖਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸੈ ਤੇ ਸਾਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੰਤਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਲਿਵਲਾਏ ਦੁਖ ਦਰਦ ਮਨ ਤੇ ਪਹੁ ਜਾਏ ਸਚ ਵਾਪਾਰ ਕਰੋ ਵਾਪਾਰੀ ਦਰਗਹ ਨਿਬਹਿ ਕੇਪ ਤੁਮਾਰੀ ਇੱਕਾ ਟੇਕ ਰਖੋ ਮਨ ਵਾਏ ਨਾਨਕ ਪਹੁਰ ਨਾਇਆ ਵਹਿ ਜਾਏ ਤਿਸਤੇ ਦੂਰ ਕਹਾ ਕੋ ਜਾਏ ਉਗਰੈ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਧਿਆਏ ਨਿਰਭੁਜ ਪੈ ਸਗਲ ਪਉ ਮਿਟੈ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁਟੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਸ ਨਾਹੀ ਦੁਖ ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਹੋ ਅਸੂਖ ਚਲੀ ਦਰਗਹ ਨਿਬਹਿ ਕੇਪ ਤੁਮਾਰੀ ਇੱਕਾ ਟੇਕ ਰਖੋ ਮਨ ਵਾਏ ਨਾਨਕ ਪਹੁਰ ਨਾਇਆ ਵਹਿ ਜਾਏ ਤਿਸਤੇ ਦੂਰ ਕਹਾ ਕੋ ਜਾਏ ਉਗਰੈ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਧਿਆਏ ਨਿਰਭੁਜ ਪੈ ਸਗਲ ਪਉ ਮਿਟੈ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁਟੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਸ ਨਾਹੀ ਦੁਖ ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਹੋ ਅਸੂਖ ਚਿੰਤਾ ਜਾਏ ਮਿਟੈ ਅਹੰਕਾਰ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਕੋਈ ਨ ਪਹੁੰਚਨਾਰ ਸਿਰ ਉਪਰ ਠਾਡਾ ਗੁਰਸੂਰਾ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਮਤ ਪੂਰੀ ਅਮਰ ਜਾ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਮਰ ਮਤ ਪੂਰੀ ਅਮਰ ਜਾ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਉਧਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕੇ ਅਨੂਪ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁੰਦਰ ਹਰ ਰੂਪ ਧਨ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪਰਵਾਨ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸੈ ਸੋਤ ਨਿਹਾਲ ਤਾ ਕੇ ਨਿਕਟ ਨਾਵਤ ਕਾਲ ਅਮਰ

हर कृपा ते संत पेटिया नानक मन प्रगास अष्टपदी संत संगंत्र प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक कटमाही अनिक रंग नाना दृष्टाही नव निदमृत प्रभु का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाधन हथैनाथ कह न जाई चर विस्माद तिन देखिया जिसाप दिखाई नानक तिरजन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत कट कट व्याप रहा भगवंत धरन माहि आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पानी बैसंतर माही चार कुंट दह दिशे समाही किस्ते पिन नहीं कोठाओ गुरु प्रसाद नानक सुख पाओ वेद प्राण सिमरत मैं देख सस्य सू निखेत्र मैं एक बाणी प्रभ की सब को बोले आप अडोल न कब हूं डोले सर्व कला कर खेल है खेल मोल न पाई है गुण है अमोल सर्व ज्योत मैं जाकी ज्योत तारे हो स्वामी ओत पोत गुरु प्रसाद परम का नास नानक दिन मैं इहो विशास संत जना का पेखण सब ब्रह्म संत जना कै हृदय सब धर्म संत जना सुन सुब बचन सर्व व्यापी राम संग्रचन जिन जाता तिस की रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख माने करण करावन हार प्रभ जाने अंतर बसे बार पियो ही नानक दर्शन देख सब वो ही आप साथ किया सब सत तिस प्रभति सगली उत्पत तिस भावै ता करे विस्तार तिस भावै ता एक अंकार अनिकला लखी न जाए जिस भावै तिसले मिलाए कव निकट कवन कही है दूर आपे आपा भरपूर अंतर गज साफ जनाए नानक तिजन या बुझाए सर्वभूता वरतारा सर्व नैना पिकनारा सगल समग्री जाका तन आपन जस आप ही सुना आवन जाने खेल बनाया ज्ञाकारी कीनी माया सबके मद लिप्त रहे जो कुछ

नाम सुखमनी सुखमनी सुखमृत प्रभु नाम भगत जना कै मन विसरा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार चुपै चुप न होवई जे लाए रहाले वकार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस्यण पां लख होहे तां इक न चलै नाल केव सचियारा होइए केव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेखो दुख सुख पाई है इक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मै जे बुझै ता हमै कह ना कोए गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जाणै निसाण गावै को गुण वडियाईयां चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तन खे गावै को जी लाए फिर देह गावै को जपै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथना कथी न आवै तोट कथ कथ कथी कोटि कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंत्र खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक विगसै वे परवाहो साचा साहिब साच नाए पाखिया पाओ अपार आख है मंग है देह देह दात करे दातार फिर के अगै रखिए जित दिसै दरबार मोहों के बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख दुआर नानक इवै जानिए सब आपे सचियार थापिया न जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेवया तिन पाया मान नानक गाविए गुणी निधान गाविए सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादम गुरमुख वेदम गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हों जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीरथ नावा जेते सुपावा विण पाने के नाए करी जेती सिरठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा हुर दसुनी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जगले जे तिस नदर न आवई ता वात न पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई ना सुजई जे तिस गुण कोए करे सुना है सिद पीर सुरनाथ सुना है धरत धवल आकाश सुना है दीपलो पाताल सुना है पोहे न सकै काल नानक भगतां सदा विगास सुना है दुख पाप का नास सुना है ईसर ब्रह्मा इंद सुना है मुख साला हनुमंद सुना है जोग जुगत तन भेद सुना है सास्त सिमरत वेद नानक भगतां सदा विगास सुना है दुख पाप का नास
सुनाए सात संतोख ज्ञान, सुनाए आठ साठ का स्नान, सुनाए पढ़ पढ़ पावे मान, सुनाए लागे सहज ध्यान, नानक भगतां सदा विगास, सुनाए दुख पाप का नास, सुनाए सारा गुणा के गाह, सुनाए सेख पीर पातशाह, सुनाए अंधे पावे राह, सुनाए हाथ होवे असगाह, नानक भगतां सदा विगास, सुनाए दुख पाप का नास, मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछे पछुताए, कागद कलम ना लिखन हार, मन्ने का बह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की सुध, मन मोहे चोटा ना खाए, मन जम कै साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन मार्ग ठाक ना पाए, मन पत स्यों प्रगट जाए, मन मग ना चले पंथ, मन धर्म सेती संबंध, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन पावे मुख द्वार, मन परवार साधार, मन तर तारी गुर सिख, मन नानक पवे ना पिख, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, पंच प्रवान पंच प्रधान, पंचे पावे दरगह मान, पंचा सोहै दर राजान, पंचा का गुर एक त्यान, जे को कहै करै विचार, करते कहै करणै नाहीं सुमार, तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत, जे को बुझै होवै सचियार, तबलै उपर किता पार, धरती होर पर होर होर, तिस ते पार तलै कवण जोर, जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया बुढ़ी कलाम, एहो लिखा लिख जाने कोए, लिखा लिखिया किता होए, किता तान सवाले हो रूप केती, दात जाने कौन कूत, किता पसाओ एको कवाओ, किस ते होए लख दरियाओ, कुदरत कवण कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पख सार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कवण कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूरख अंधकोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गाल वड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पाखो खाहे, असंख निंदक सिर करह पार, नानक नीच कह विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख काहे सिर पार होए, अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखन बोलन बाण, अखरा सिर संजोग वखाण, जिन ए लिखे तिस सिर नाहे, जिव फुरमाए तिव तिव पाहे, जेता कीता तेता नाओ, विण नावै नाही को थाओ,
कुदरत कवण कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। भरिए हाथ पैर तन देह, पानी धोता है उतर सोखे, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबून लइए ओह धोए, भरिए मत पापा कै संग, ओह धोपै नावै कै रंग। पुनी पापी आखण नाहे, कर कर करना लिख लै जाहो, आपे बीज आपे ही खाहो, नानक हुक्मी आवहो जाहो। तीरथ तप दया दत दान, जे को पावे तिलका मान, सुनया मनया मन कीता पाओ, अंतरगत तीरथ मल नाओ। सब गुण तेरे मैं नाही कोए, वेण गुण कीते भगत ना होए। स्वस्थ आथ बाणी ब्रह्माओ, सत सुहाण सदा मन चाओ। कवण सो वेला वखत कवण, कवण थित कवण वार, कवण से रुति माह कवण, जित हुआ आकार। वेल ना पाइया पंडती, जे होवै लेख पुराण, वखत न पायो कादिया, जे लिखन लेख कुराण। थित वार ना जोगी जाने, रुत माह ना कोई, जा करता सिर ठीक हो साजे, आपे जाने सोई। किव करे आखा किव सालाही, क्यों वरनी किव जाना, नानक आखण सब को आखै, एक दू एक सियाणा। वड्डा साहेब वड्डी नाई, कीता जाका होवै, नानक जे को आपो जाणै, अगै गया ना सोहै। पाताला पाताल लख आगासा आगास, ओड़क ओड़क पाल थके, वेद कहन एक बात। सहस अठारह कहन कतेबा, असलू एक तात, लिखा होए ता लिखी है, लिखै होए विनाश, नानक वड्डा आखी है, आपे जाने आप। सालाही सालाहे, एती सुरत न पाईया, नदियां अतवाह पवै सुमुंद, न जानिए है सुमुंद। साह सुल्तान गिरहा, सेती माल तन, कीड़ी तुल ना होवनी, जे तिस मन हो ना विसरै। अंत ना सिफती कहन ना अंत, अंत ना करण देन ना अंत, अंत ना वेखण सुन ना अंत, अंत ना जापै क्या मन मंत, अंत ना जापै कीता आकार, अंत ना जापै पारावार। अंत कारण केते बिल लाहे, ताके अंत ना पाए जाहे, एहो अंत ना जाने कोए, बहुता कहिए बहुता होए। वड्डा साहेब ऊंचा थाऊं, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाऊं, एवड ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे कौ जाने सोए, जेवड आप जाने आप आप। नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाए। केते मंगह जोद अपार, केते अगणत नहीं विचार, केते खप तुट है वेकार। केते लै लै मुकर पाहे, केते मूर्ख खाही खाहे, केतिया दुख भूख सद मार, ए पे दात तेरी दातार। बंद खलासी पाणै होए, होर आख ना सकै कोए, जे को खाए को आखण पाए, ओह जाने जे तिया मोहे खाए। आपे जाने आपे दे, आख है से पे के ही के, जिसनु बखसे सिफत सला, नानक पात साही पात साहो। अमुल गुण अमुल वापार, अमुल वापारिये अमुल भंडार, अमुल आवै अमुल लै जाहे, अमुल पाए अमुला समाहे। अमुल धर्म अमुल दीबाण, अमुल तुल अमुल परवान, अमुल बखसीस अमुल निशान, अमुल कर्म अमुल फुरमान, अमुलो अमुल आखिया न जाए, आख आख रहे लिवलाए। आख है वेद पाठ पुराण, आख है पढ़े करे वख्याण,
आखह बरमे आखह इंद आखह गोपी तय गोविंद आखह ईसर आखह सिद्ध आखह किते किते बुद्ध आखह दानव आखह देव आखह सुर नर मुन जन सेव किते आखह आखण पाहे किते कह कह उठ उठ जाहे किते किते होर करे ता आख ना सकह केई के जे वड भावै ते वड होए नानक जाने साचा सोए जे को आखै बोल विगाड़ ता लिखिए सिर गवारा गवार सो दर केहा सो घर केहा जित बह सर्ब समाले वाजे नाद अनेक असंखा किते वावण हारे किते राग परी स्यों कहियन किते गावण हारे गावै तुहनो पाउण पाणी बैसंत्र गावै राजा धर्म दुआरे गावै चित गुप्त लिख जाण लिख लिख धर्म विचारे गावै ईसर बर्मा देवी सोहन सदा सवारे गावै इंद इंदासन बैठे देवत्या दर नाले गावै सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावै वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावै मोहनिया मन मोहन सुरगा मश पयाले गावन रतन उपाय तेरे आठ साठ तीरथ नाले गावै जोध महाबल सूरा गावै खाणी चारे गावै खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे से तुदनो गावै जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा साचो साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी हुक्म ना करना जाई सो पात साहो साहा पात साहेब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरम पात झोली ध्यान की करै बेपूत खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत आदेश तिसाय आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद अवरा साध संजोग विजोग दोए कार चलावै लिखे आवै भाग आदेश तिसाय आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत व्याई तीन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीबाण जिव ते सुभावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओ वेखै ऊना नदर न आवै बहुता एहो विडाण आदेश तिसाय आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो एका वार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसाय आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी भौ लख होहे लख होवै लख वीस लख लख गेड़ा आखिया है एक नाम जगदीस एतराहे पत पवड़ियां चढ़िया होए कीस सुन गला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़े ठीस आखण जोर चुपै नह जोर जोर ना मंगण देन ना जोर जोर ना जीवन मरण नह जोर जोर ना राजमाल मन सोर
ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ। ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਤਿੱਥੈ ਸੋਹਨ ਪੰਚ ਪਰਵਾਣ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨਿਸਾਣ, ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਇਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ, ਕੇਤੇ ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਵੈਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ, ਕੇਤੇ ਅਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ, ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਧੂਪ ਦੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ, ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ, ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨ, ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ, ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ, ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਿਰਿੰਦ, ਕੇਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ, ਕੇਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਤਿੱਥੈ ਨਾਦ ਬਿਨੋਦ ਕੋਡ ਆਨੰਦ, ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ, ਤਿੱਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ। ਤਾਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛੋਤਾਏ, ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਕੀ ਸੁਧ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ, ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰ, ਤਿਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ, ਨਾ ਉਹ ਮਰ ਹੈ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋ, ਕਰੈ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ, ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ, ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਤਿੱਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ, ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ, ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਆਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਭਾਉ ਖਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਉ, ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ, ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਸਲੋਕ ਪਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖਿਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੀ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ, ਛਪੈ ਛੰਦ ਤਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ, ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹੇ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਿਹੇ, ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅਮਿਤੋਜ ਕਹਿ ਜੈ, ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣ ਸਾਹੁ ਸਹਾਣ ਗਣਿ ਜੈ, ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਆਸੁਰ, ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ, ਤਵ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ, ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ, ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ
नमस्तवंग अकाले, नमस्तवंग कृपाले, नमस्तंग अरूपे, नमस्तंग अनूपे, नमस्तंग अपेखे, नमस्तंग अलेखे, नमस्तंग अकाये, नमस्तंग अजाये, नमस्तंग अगंजे, नमस्तंग अपंजे, नमस्तंग अनामे, नमस्तंग अठामे, नमस्तंग अकर्मंग, नमस्तंग अकर्मंग, नमस्तंग अनामंग, नमस्तंग अतामंग, नमस्तंग अजीते, नमस्तंग अपीते, नमस्तंग अबाहे, नमस्तंग अटाहे, नमस्तंग अनिले, नमस्तंग अनादे, नमस्तंग अशेदे, नमस्तंग अगादे, नमस्तंग अगंजे, नमस्तंग अपंजे, नमस्तंग उदारे, नमस्तंग अपारे, नमस्तंग सोएक, नमस्तंग अनेक, नमस्तंग अपूते, नमस्तंग अजूपे, नमस्तंग निरकर्मे, नमस्तंग निरपरमे, नमस्तंग निर्देशे, नमस्तंग निरपेशे, नमस्तंग निरनामे, नमस्तंग निरकामे, नमस्तंग निरताते, नमस्तंग निरकाते, नमस्तंग निरतूते, नमस्तंग अपूते, नमस्तंग अलोके, नमस्तंग अशोके, नमस्तंग निरतापे, नमस्तंग अथापे, नमस्तंग तिरमाने, नमस्तंग निधाने, नमस्तंग अगाहे, नमस्तंग अबाहे, नमस्तंग तिरभ्रगे, नमस्तंग असर्गे, नमस्तंग प्रपोगे, नमस्तंग सजोगे, नमस्तंग आरंगे, नमस्तंग अपंगे, नमस्तंग आगमे, नमस्तस्तरमे, नमस्तंग जलाशरे, नमस्तंग निराशरे, नमस्तंग अजाते, नमस्तंग अपाते, नमस्तंग अमजबे, नमस्तस्त अजबे, अदेसंग अदेसे, नमस्तंग अपेसे, नमस्तंग निरपामे, नमस्तंग निर्वामे, नमो सर्वकाले, नमो सर्वदयाले, नमो सर्वरूपे, नमो सर्वकूपे, नमो सर्वखापे, नमो सर्वथापे, नमो सर्वकाले, नमो सर्वपाले, नमस्तस्तदेव, नमस्तंग अपेव, नमस्तंग अजनमे, नमस्तंग सुबनमे, नमो सर्वगौणे, नमो सर्वपौने, नमो सर्वरंगे, नमो सर्वपंगे, नमो कालकाले, नमस्तस्तदयाले, नमस्तंग अवर्णे, नमस्तंग अमरणे, नमस्तंग जरारंग, नमस्तंग कृतारंग, नमो सर्वतंदे, नमो सत अबंदे, नमस्तंग नृसाके, नमस्तंग निर्वाके, नमस्तंग रहीमे, नमस्तंग करीमे, नमस्तंग अनंते, नमस्तंग महंते, नमस्तस्त रागे, नमस्तंग सोहाके, नमो सर्वशोकं, नमो सर्वपोखं, नमो सर्वकर्ता, नमो सर्वहर्ता, नमो जोग जोगे, नमो भोग भोगे, नमो सर्वदयाले, नमो सर्वपाले, चाचरी छंद त्वा प्रसाद, अरूप है, अनूप है, अजू है, अपू है, अलेख है, अपेख है, अनाम है, अकाम है, अते है, अपे है, अजीत है, अभीत है, त्रिमान है, निधान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, आजाद है, अजन्म है, अपर्ण है, अपूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, अचूज है, अचंज है, अमीक है, रफीक है, अतंत है, अबंध है, निर्बूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अलाह है, अजा है, अनंत है, महंत है, अलीक है, नृसृत है, निर्लंब है, असंभ है, आगम है, अजम है, अपूत है, अशूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपरम है, अजीत है, अभीत है, अबाह है, आगाह है, अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है, पुजंग प्रयात छंद, नमो सर्वमाने, समस्ती ने धाने, नमो देव देवे, अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्वपाले, नमो सर्वगौणे, नमो सर्वपहुणे, अनंगी अनाथे, नरसंगी प्रमाथे, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत नृते, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे, समस्ती स्वरूपे, प्रपंगी प्रमाथे, समस्ती बेभूते, कलंकं बिना नेकलंकी स्वरूपे, नमो राज रजवेश्वरं परम रूपे, नमो जोग जुगवेश्वरं परम सिद्धे, नमो राज रजवेश्वरं परम वृद्धे, नमो शस्त्र पाणे, नमो अस्त्र माणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोक माता, अपेखीय परमे, अभोगी अभुगते, नमो जोग जुगवेश्वरं परम जुगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो साह साहं, नमो पुहुप पुहुपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तं इष्णानं, नमो मंत्र मंत्रं, नमो यंत्र यंत्रं, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रं, सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी, अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी, सदा सिद्ध धा बुद्ध धा विरुद्ध कर्ता, अदो उर्ध अर्धं अगं ओग हर्ता, परं परं परमेश्वरं प्रोषपालं, सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं, अशेदी अपेदी अनामंग अकामंग, समस्तो पराजी समस्तास्तताम, तेरा जोर चाचरी छंद,
जले हैं थले हैं पीत हैं अपहे हैं प्रभु हैं अजू हैं आदेश हैं अपेश हैं भुजंग प्रयात छंद अगाधे अबाधे अनदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ती निधाने नमस्तवंग निर्नाथे नमस्तवंग प्रमाथे नमस्तवंग अगंजे नमस्तवंग अपंजे नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृष्णं नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिज्जे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी चरपट छंद त्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुवाल शंद त्वा प्रसाद आद रूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार सर्वमान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपुन काल यत्र तत्र विराजे हि आवतूत रूप रिसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद अशेख देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग यत्र तत्र दिशा दिशा होय फैल्यो अनुराग नाम काम बहीन पेखत ताम हू नह जाहे सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मानत ताहे एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जानहि जिह वेद और कतेब रूप रंग न जात पात सो जानहि केह जेब तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्र बक्कर फिर चतुर चक मानहि पुरतीन लोक चौ दह के बिख जग जाप ही जेह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सब जेह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रच्यो स्वयंभव गणन भंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख आदेश धर्म धाम सो परम रहत अपहूत अलख अपेश अंग राग न रंग जा कह जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक आन उसतत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनपेख सर्वशास्त्र न जानहि जिह आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनपेख सर्वशास्त्र न जानहि जिह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जा कह नेत पाखत नेत कोट सिमरत पुराण शास्त्र न आवही वह चित मधुभार शांत त्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनपौ प्रकाश निस दिन अनाश आजान बाहु शाहान शाहु राजान राज पहनान पहान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग आपा अपंग गत मित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपय निकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड आलस्य कर्म आदृश्य धर्म सर्वा प्रणाढ़ अंडंड बाढ़ जाचरी छंद त्वा प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे आकामे भुजंग प्रयात छंद चत्र चक्र करता चत्र चक्र हरता चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र भरती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र माने चत्र चक्र दाने जाचरी छंद
न सत्राय न मित्राय न परमं न पित्राय न कर्मं न काये अजन्मं अजाये न चित्राय न मित्राय परे हैं पवित्राय प्रतिसय अधिसय अदृशय अकृशय भगवती शांद त्व प्रसाद कातते के अशेज देसै के अभेज्य भेसै के अगंज करमै के अभंज भरमै के अभेज लोकै।

के आदित्य सो कह के अवतूत बरने के विभूत करने के राजं प्रभा के धर्मं तुजा है के आशोक बरने के सर्वा आवरण के जगतं कृति है के शत्रं क्षत्रि है के ब्रह्मं स्वरूपे के अनुपाओ अनुप के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रं बहिने के एक है अधीने के रोजी रजा कह रही मेरे हक है के पाक वैब है के गय बोल गैब है के अपूल गुना है के सहान सा है के कारण कुन दह के रोजी देहांद है के राज करहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौन है के सर्वत्र

केसरबत्र घंता केसरबत्र पेखी केसरबत्र पेखी केसरबत्र काज है केसरबत्र राज है केसरबत्र सोख है केसरबत्र पोख है केसरबत्र त्राण है केसरबत्र प्राण है केसरबत्र देश है केसरबत्र पेशा है केसरबत्र मान्य है सदैवंग प्रधान्य है केसरबत्र जाप्य है केसरबत्र थाप्य है केसरबत्र पान है केसरबत्र मान है केसरबत्र इंद्र है केसरबत्र चंद्र है केसरबंग कलीमे के परमंग फहीमे के आकल अलामे के साहिब कलाम है के हुसनल वजू है तमामुल रजू है हमें सुल सलाम है सलीखत मुदाम है गनीमल सिकस्त है ग्रीबुल परसत है बिलंदुल मकान है जमीन जमान है तमीजुल तुमाम है रजुअल निधान है हरीफल अजीम है रजाइक यकीन है अनेकुल तरंग हैं अपेद हैं अपंग हैं अजीजुल निवाज हैं गनीमुल खिराज हैं निरुक्त स्वरूप हैं त्रिमुक्त विभूत हैं प्रपुगत प्रभा हैं सुजुगत सुदा हैं सदैवं स्वरूप हैं अपेदी अनूप हैं समस्तोपराज हैं सदा सर्वसाज हैं समस्तुल सलाम हैं सदैवल अकाम हैं निर्बाध स्वरूप हैं अगाध हैं अनूप हैं ओवं आद रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभृगं त्रिबादे अगंजे अगादे सुभंग सर्व पहागे सुसर्वा अनुरागे त्रिपुगत स्वरूप हैं अछेज हैं अछूत हैं कि नरकंग प्रणास हैं पृथ्वीयुल प्रवास हैं निरुक्त प्रभा हैं सदैवं सदा हैं बेपुगत स्वरूप हैं परजुगत अनूप हैं निरुक्त सदा हैं बेपुगत प्रभा हैं अनुक्त स्वरूप हैं परजुगत अनूप हैं चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुवाद है अजय है अभय है अपूत है अतूत है अनाश है उदास है अकंध है अबंध है अपगत है विरक्त है अनाश है प्रकाश है नचिंत है सुनिंत है अलेख है अधिक है अलेख है अपेख है अटा है अगा है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट शांत त्वा प्रसाद सर्वहंता सर्वगंता सर्वख्याता सर्वज्ञाता सर्वहर्ता सर्वकर्ता सर्वप्राणं सर्वप्राणं सर्वकर्मं सर्वधर्मं सर्वजुगता सर्वमुक्ता रसावल शांतत्वा प्रसाद नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म प्रमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्र है न पुत्र है न सत्र है न मित्र है न तात है न मात है न जात है न पात है निरसाकं सरीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती शांतत्वा प्रसाद के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमें सुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चराग है के कामल करीम है के राजक रहीम है के रोजी देहंद है के राजक रहंद है करीमल कमाल है के हुसनल जमाल है गनीमल खिराज है ग्रीबुल निवाज है हरीफुल शिकान है हिरासुल फिकान है कलंकन प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजाइक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब के राह है के नरकं प्रणास है बहस्तुल निवास है के सर्बुल गुवन है हमेशुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परंग परम ईश है समस्तुल अदीस है अदेशुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीनल जमा है अमीकुल इमा है क्रीमुल कमाल है के जोरत जमाल है के अचलम प्रकाश है के अमितो सुबास है के अजब स्वरूप है के अमितो विभूत है के अमितो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलम अनंग है के अमितो अपंग है मधुभार छंद त्व प्रसाद मुन मन प्रणाम गुणगन मुदाम हर बर अगंज हर नर प्रपंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुनमन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अनशिज अंग आसन अपहंग उपमा अपार गत मित उदार जल थल अमंड दिस्विस अपंड जल थल महंत दिस्विस बेअंत अनुभव अनास त्रिप तर तुरास आजान बाहो एक सदाहो ओंकार आद कथनी अनाद खलखंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनशेज गात आजिज न बात अनचांज गात अनरंज बात अनटट पंडार अनठट अपार आडीठ धर्म अतटीठ कर्म अनब्रण अनंत दाता महंत
ਹਰ ਬੋਲ ਮਨਾ ਛੰਦ ਤੁਆ ਪ੍ਰਸਾਦ।

करुणालय है, अर्कालय है, खलखंडन है, महमंडन है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्व उबारण है, त्रित के तरण है, जाग के करण है, मन मान्य है, जाग जान्य है, सर्वंपर है, सर्वंकर है, सर्वपाश्य है, सर्वनाश्य है, करुणा कर है, विश्वम्बर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है, खालखंडस है, पर ते पर है, करुणा कर है, अजपा जप है, अथपा थप है, अकृताकृत है, अमृतामृत है, अमृतामृत है, करुणाकृत है, अकृताकृत है, तरणी तृत है, अमतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृताकृत है, अमृतामृत है, अजबाकृत है, अमृतामृत है, नरनायक है, खालकायक है, विश्वम्बर है, करुणालय है, नृपनायक है, सर्वपायक है, भाव भंजन है, अरे गंजन है, रेप तापन है, जाप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हरता हर है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म बस है, जस के जस है, भुजंग प्रयात छंद, नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संग काम संग सांत रूपे, नमो परम ततंग अततंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादंग बेभूते, कलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे, अनंगी अनामे, त्रिभंगी त्रिकाले, अनंगी अकामे, एक अश्री शांत, अजय अलय अपह अभय अभू अजू अनास आकाश, अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख, अनाम अकाम अघा अठा अनाते प्रमाते अजूनी अमूनी, ना रागे ना रंगे ना रूपे ना रेखे, अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे, पुजंग प्रयात छंद, नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे, अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे, नृकामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे, कुकर्मंग प्रणासी सुकर्मंग विभूते, सदा सच्चिदानंद सत्रंग प्रणासी, क्रीमल कुनिंदा समस्तुल निवासी, अजायब बेभूते गजायब गनी में, हरियं करी मुल रही में, चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुगते, सुयं भव शुभं सर्वदा सर्व जुगते, दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे, सदा अंग संगे अपंगं बेभूते, चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुगते, स्वयं भव शुभं सर्वदा सर्व जुगते, दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे, सदायंग संगे अपंगं बेभूते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवें तो प्रसाद सवैये, श्रावक सुध समूह सिधान के, देख फिरेओ घर जोग जति के, सूर सुरार्दन सुध सुधातिक संत समूह अनेक मति के, सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राण पति के, श्री भगवान की पाए कृपा होते एक रति बिन एक रति के, माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग, सुरंग सुवारे कोट तुरंग, कुरंग से कूदत पाऊन के, गौन कौ जात निवारे, भारी पुजान के भूप पहली बेद, न्यावत शीस न जात बिचारे, एते पहे तो कहा पहे भूपत, अंत को नांगे ही पाए पधारे, जीत फिरै सब देश दिशान को, बांजित ढोल मृदंग नगारे, गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर, हिंसत ही है राज हजारे, भूत पवेख पवान के भूपत, कौन गनाय नहीं जात बिचारे, श्री पत श्री भगवान भजे बिन, अंत कौ अंत के धाम सिधारे, तीर्थ नान दया दम दान, सो संयम नेम अनेक बसेख है, वेद पुराण कतेब कुरान, जमीन जमान सबान के पेख है, पौन आहार जति जात तार, सब सो विचार हजार क देख है, श्री भगवान भजे बिन भूपत, एक रति बिन एक न लेख है, सुध सिपाहा दुरंत दुबाहा, सुसाज सना दुर्जान दलेंगे, भारी गुमान परे मन में, कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे, तोर अरीर मरोर मवासन, माते मतंगन मान मलेंगे, श्री पात श्री भगवान कृपा बेन,
त्याग जहान निदान चलेंगे, वीर अपार बड़े बरियार, अब चारे सार की तार पशैया, तोरत देश मिलिंद मवासन, माते गजान के मान मलैया, गाड़े गड़ान को तोड़न हार, सो बात नहीं चक चार लवैया, साहिब श्री सबको सिर नायक, जाचिक अनेक सो एक देवैया, दानव देव फनिंदन साचर पूत, पवेख पवान जपेंगे, जीव जिते जल में थल में, पल ही पल में सब थाप थपेंगे, उन प्रतापन बाट जैत तुन, पापन के बहु पूंज खपेंगे, साध समूह प्रसन्न फिरै जग, सत्र सवै अवलोक जपेंगे, मानव इंद्र गजेंद्र नरातप, जाऊन त्रिलोक को राज करेंगे, कोट इस नानक जादिक दान, अनेक सुअम्बर साज बरेंगे, ब्रह्म महेश्वर बिसन सचिपत, अंत फसे जम फास परेंगे, जे नर श्री पात के प्रस हैं पाग, ते नर फिर न देह तरेंगे, कहा पयो जो दो लोचन मूंद कै, बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो, नात फ्रियो लिए सात समुद्रन लोक गयो, प्रलोक गवायो, बास कियो बिख्यान सो बैठ कै, ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो, साच कहो सुन ले हो सब, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो, काहू लै पाहन पूज धरयो सिर, काहू लै लिंग गरे लटकायो, काहू लख्यो हर आवाची दिशा में, काहू पशाक सीस निवायो, को भूतान को पूजत है पाश, को मिरतान को पूजन तायो, कूर क्रिया उर्जियो सब ही जग, श्री भगवान को भेद ना पायो।

जग श्री भगवान को भेद ना पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कब्यो बाच बेनती, चौपाई हमरी करो हाथ द रक्षा। पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रत पारा, हमरे दुष्ट सबै तुम कावो। आप हाथ दय मोहे बचावो, सुखी बसै मोरो परिवारा। सेवक सिख सबै करतारा, मोर रक्षा निज कर दय करिय। सब बैरन को आज संग्रिय, पूर्ण होए हमारी आसा। तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें शाड कोई अवर ना त्याऊ। जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दै मुझे उबरे है, मरण काल का त्रास निवरी है। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जू कर हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पूरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी सेव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दायत जशन उपजायो। आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी। सेवकन को सैव गुण सुख दियो, सत्रन को पालमो बाद कियो। घाट घाट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चिटी ते कुंचर अस फूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घाट घाट के पट पट की जाने। जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देहे अपारा। जब अकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तार है, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंभ, आद अनिल अनाद असंभव। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड काश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, किह बिद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज से तज कीने, ओत भुज खान बहुर राच दीने। कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट पयो शंकर कैठा। सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबारो असिख संगरो। दुष्ट जीते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण कहता। जे अस तुझ तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखत हवा मरे। पुरख जवन पाग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो काल को एक बार त्याय है, ताकि काल निकट न है आय है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो, ताकि ताप तनक मोहरे हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वाय सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दुख ते रहा। खड़क के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दै लिहो उबारी। सर्ब ठाउर मोहो सहाई, दुष्ट दुख ते लिहो बचाई। कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता। केल बेखो सकल देह को हरता,
दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस तुज जब भय दयाला, पूरन करा ग्रंथ तत्काल। मन बाशत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्यापत कोई अड़िल। सुने गुंग जो जाहे सुरस न पावई, सुने मूड चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पाओ निकट न तिन नर की रहै, हो जो जाकी एक बार चौपाई को कहै। चौपाई संबत सत्राए, सहस पण जय अर्ध सहस फुन तीन कहि जय। भाद्रव सुदी अष्टमी रविवार, तीरस तद्रव ग्रंथ सुधारा। सुइया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरे नहीं आनेओ। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मानेओ। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद, कहे हम एक न जानेओ। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहेओ सब तोहे बखानेओ। दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कै, गहे तुहारो द्वार। बाहे गहे की लाज अस, गोविंद दास तुहार।

वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नाओ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण।

निरंकार सच नाम जाका किया सकल जहान। सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ पिन्नी रहन जना मंचाओ, सिखी सिख्या गुरु विचार, नदरी कर्म लंघाए पार। कोलू चरखा चक्की चक।

बंधन बंद हुआ है सोए पे कृतन के सबको, नच नच हसे चलने से रोए उड़न जाई सदन होए, नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन म

हमें आजात है, हमें कर्म कमाए, हमें ही बंधना सिर्फ जो नि पाए। हमें कथों उपजाए कि संजय में जाए, हमें हुक्म है पै कर फिराए। हमें दीर्घ रोग है दारू की समाए, कृपा करे जे अपनी ता गुरु का शब्द कमाए। नानक है सुनो जनो, इस संजय में दुख जाए पौड़ी सेवक दी संतो गई।

टिका तेर धोती खाई हर श्री जगत का साई नील बस्त्र पैर हुए प्रवान मले धान ले पूजे प्राण अपा क्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे ना जाना देखे चौका कड़ी कार उपरिया बैठे कूड़े यार मत पिटावे

रंग से रंग रोवे चुप पी कर जाए परवा नाए किसे केरी बाज सच नाए बाटे ऊपर खर्च मंगा

करे गुरु कल की तार जगदीच बोले सुनहास शास्त्रिया गाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

तुझते उपजह तुझ माहि सुमावै। नानक साच कह बेनंती मिल साचे सुख पाएंदा। मारू महला पहला अरबद नरब

ना तद ज्ञान ध्यान कुल उपत ना को गणत गणाएदा वर्ण भेख नहीं ब्राह्मण खत्री देव न देहुरा गौ गायत्री होम जग नहीं तीर्थ नावण

रैयत राव ना हो मैं दुनिया ना को कहन कहाए दा पाओ ना भगती ना शिव शक्ति साजन मीत बिंद नहीं रखती।

पाठ पुराण उदय नहीं आस्त, कहता भक्ता आप अगोचर, आपे अलख लखाइंदा। ना जात सुभाना ता जगत उपाया, बाज कला आडान रहाया। ब्रह्मा विष्णु महेश उपाए, माया मोह बधाइंदा। विरले कौ गुर शब्द सुनाया, कर कर देखै हुक्म सबाया। खंड ब्रह्मांड पाताल अरंभे, गुप्त हो प्रगटी आएंदा। ताकांत न जाने कोई, पूरे गुरते सोझ ही होई। नानक साच रत्ते विषमादी, विषम भये गुण गाएंदा। मारू महला पहला, आपे आप उपाय निराला। साचा थान कियो दयाला, पौन पानी अग्नि का बंधन। काया कोट रचाएंदा, नौ घर थापे थाप निहारै। दसवें वासा अलख अपारै, सायर सप्त भरे जल निर्मल। गुरमुख मैल न लाएंदा, राव सत दीपक जोत सुबाई। आपे कर विखै वडियाई, जोत स्वरूप सदा सुखदाता। सच्चे शोभा पाएंदा, गढ़ में हाट

भंडारै सर्ब कला ले आपे रहया, गुरमुख किसै बुझाईंदा। नदर करे गु पूरा गुर फिटै, जम जंदार न मारै फिटै। ज्यों जल अंदर कमल बिगासी, आपे बिगस त्याईंदा। आपे वरखै अमृत धारा, रतन जवेहर लाल अपारा। सतगुर मिले ता पूरा पाइया, प्रेम पदार्थ पाएंदा। प्रेम पदार्थ लह अमोलू,

भोजन पूरा तिस मिलया भरम चुकाएंदा। सुनो सप्त सरोवर थापे जिन साजे विचारे आपे। तित सर तित सत सर मनुआ गुरमुख नावै फिर बहुड़ जोर न पाएंदा। सुनो चंद सूरज गहनारे तिसकी जोत त्रिभवन सारे। सुन्ने अलख अपार निरालम सुन्ने ताड़ी लाएंदा। सुन्नो धरत आकाश उपाए बिन थम्मा राखे सच कल पाए। त्रिभवन साज मेखुली माया

उत्भुज चलत किया सिर करते, विस्माद शब्द दिखाईंदा, सुन्नो रात दिन सदोए किए, ओपत खपत सुखा दुख दिए, सुख दुख ही ते अमर अतीता, गुरमुख निज घर पाईंदा, साम वेद ऋग जुजुर अथर्वण, ब्रह्मे मुख माया है त्रैगुण, ताकि कीमत कह न सकै को, क्यों बोले ज्यों बोलाईंदा, सुन्नो सप्त पाताल उपाय, सुन्नो सप्त पाताल उपाय, सुन्नो भवन रखे लिवलाए, आपे कारण किया अपरंपर, सब तेरो किया कमाईंदा, राज तम सत कल तेरी छाया, जन्म मरण हौ मैं दुख पाया, जिसनु कृपा करे हर गुरमुख, गुण चौथे मुक्त कराईंदा, सुन्नो उपजे दस अवतारा, सृष्ट उपाय किया पासारा, देव दानव गण गंधर्व साजे, सब लिखिया कर्म कमाईंदा, गुरमुख समझै रोग न होई, एह गुर की पौड़ी जाने जन कोई, जुगह जुगंतर मुक्त परायन, सो मुक्त भया पत पाईंदा, पंच तत् सुन्नो परगासा, देह संजोगी कर्म अभ्यासा, बुरा भला दोए मस्तक लिखे, पाप पुन भी जाएंदा, उत्तम सतगुर पुरख निराले, शब्द रते हर रस मत वाले, रिद्ध बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाईए, पूरे

आसा मनसा हम मैं सहसा नर लोभी कूड़ कमाएंदा। सतगुर ते पाए विचारा सुन समाध सच्चे घर बारा। नानक निर्मल नाद शब्द धुन सच रामै नाम समाएंदा। मारू महला पहला जह देखा तह दीन दयाला। आए न जाई प्रभ कृपाला जिया अंदर जुगत समाई। रहो निरालम राया जग जिसकी छाया जिस बाप न माया। ना तिस भैन ना भराऊ कमाया ना तिस ओपत खपत कुल जाती। ओह अजरावर मन पाया तू अकाल पुरख नाही सिरकाला। तू पुरख अलेख अगम निराला सत संतोख शब्द अत शीतल। सहज पाए लिवलाया त्रैवर ताए चौथे घर वासा। काल विकाल किए इक ग्रासा निर्मल ज्योत सर्व जग जीवन। गुर अनहद शब्द दिखाया उत्तम जन संत भले हर प्यारे। हर रस माते पार उतारे नानक रेन संत जन संगत। हर गुर पर साधी पाया।

गुर ज्ञान रतन दीप आया, पंच तत् मिल इह तन किया, आत्म राम पाए सुख थिया, कर्म करतूत अमृत फल लागा, हर नाम रतन मन पाया, ना किस भूख प्यास मन मानिया, सर्व निरंजन घट घट जानिया, अमृत रस राता केवल बैरागी, गुरमत पाए सुपाया, अध्यात्म कर्म करे दिन राती, निर्मल ज्योत निरंतर जाती, शब्द रसाल रसन रस रसना, बेन रसाल वजाय।

शब्द सतगुरु सेवै, जरा जम तिस जोहे न साकै, साचे स्यों बने आई हे। तृष्णा अग्न जलै संसारा, जल जल खपै बहुत विकारा, मन ठौर न पाए कबहू, सतगुर बूझ बुझाई हे। सतगुर सेवन सेवड भागी, साचै नाम सदा लिव लागी, अंतर नाम रविया नि केवल, तृष्णा शब्द बुझाई हे। सच्चा शब्द सच्ची है बाणी, गुरमुख विरलै किनै पछाणी, सच्चै शब्द रत्ते बैरागी, आवण जान रहाई हे। शब्द बुझै सो मैल चुकाए, निर्मल नाम वसै मन आए, सतगुरे अपना सद ही सेवह, हम मैं विचहु जाई हे। गुरते बुझ है तां दर सूझ है, नाम विहूना कथ कथ लुझ है, सतगुर सेवे की वडियाई, तृष्णा भूख गवाई हे। आपे आप मिले तां बुझ है, ज्ञान विहूना किछु न सूझ है, गुर की दात सदा मन अंतर, बाणी शब्द बजाई हे। जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया, कोई न मिटै तुर पर माया, सत्संगत मैं तिन ही वासा, जिनको तुर लिख पाई हे। अपनी नदर करे सो पाए, सच्चै शब्द ताड़ी चित लाए, नानक दास कह बेनंती, भिखिया नाम दर पाई हे। अपनी नदर

हाँ जी, आई होप द वॉइस इज क्लियर नाउ, इज दैट बेटर? हाँ जी, अगे कहने एक कड़ी ना मिलते ता कलयुग होता। ही सेज इवन इफ आई डोंट सी यू, इवन इफ आई डोंट मीट यू, कड़ी ना मिलते ता कलयुग होता। इट्स लाइक अ कलयुग फॉर मी, द डार्क एज। हुण कद मिलिए प्रिय तुद भगवंता, वेन विल आई मीट यू ओ माई बिलवर गॉड। तुद भगवंता हुण कद मिलिए, इट्स दिस लॉट ऑफ डीप मीनिंग्स टू इट, यू नो। इक कण मिलते, इक कड़ी ना मिलते ता कलयुग होता। कैन टेक द होल आवर कि कलयुग किवें होया, इक कड़ी नहीं मिले। दैट्स अनदर टॉपिक टू डिवेल्व इन टू, बट देर इज लॉट ऑफ यर्न इन दिस शब्द टू मीट एंड टू प्री टू द गुरु, टू सतगुरु। सिस मोई रहन ना विहावे, नींद ना आवे, बिन देखे गुरु दरबारे जियो। दिस इज रैन ना विहावे, आई कैन नॉट एंड्योर द नाइट। नींद ना आवे, आई कैन नॉट स्लीप, बिन देखे गुरु दरबारे जियो। विदाउट सीइंग योर कोर्ट, विदाउट हैविंग द दर्शन ऑफ योर कोर्ट, एंड देन हाउ कोली जियो कोल कुमाई, तिस सच्चे गुरु दरबारे जियो। दिस एम सैक्रीफाइज टू दैट गुरु दरबारे, टू दैट ट्रू कोर्ट। This is one of those shabads. Most of the shabads in Guru Granth Sahib Ji, which you hear kirtan in, they have one rahao tuk, and that is the main tuk. In this shabad, you see every pada has a different rahao tuk also. Yes. Then that's the last pada. It says, Pag hua Guru Sant Milaya. It is such a great fortune that I have met the Sant Guru, my Saint Guru. Prabhu Vinasi Karme Paya. I found the immortal God, Prabhu Abhinasi, jida naas nahi hunda, naas na hon wala Prabhu. I have found it within my own self, within my own home. Sev kari pal chasa na vichhda, jan nanak daas tumhare jiyo. He says, now I will serve you forever and I shall never be separated from you, even for an instant. O Nanak, I am your slave, O beloved master. How koli jiyo kol kumai, jan nanak das tumare jiyo. I am sacrificed, my soul is sacrificed. O Nanak, I am your slave, O God. Kasi pada chhattitai te, evala tera mukh suhava jiyo sahaj tun bani, chir hua dekhe sarang pani. This is very important, I just want to bring it up. Sarang pani word te, can I say, mukh suhava, your face is so beautiful. You know, your sound, what you say, your bani brings in that brahm gyan, that sahaj thun bani. It's like a sahaj thun which comes to me. Chir hua dekhe sarang pani. So in this shabad, sarang pani is used, sarang is used as again that chatrik bird. It's like that song bird who is looking for that water drop, has never, it's been quite some time, quite a long time. Sarang pani, osse vi andha sarang pani also comes for Vaheguru himself, jira tartinu. Sambhal reya hai, that it comes for that also. Tanso desh jahan tu vasya, mere sajjan meet murare jiyo. How blessed is that land, O my Sadguru, where you are residing. With that, I think we will recite the Shabad.